ए अखिल ब्रह्मांड नु सर्जन संचालन अने पालन करनारी शक्ति स्वरूपा माँ छे, जेने श्रद्धा जगत ना लोको जगदम्बा कहे छे। ए सर्वव्यापक माए आखे आखा आकाश नु जे ओढ़ू ओढ़ू छे ने, ए ओढ़ू एटले ज आ भेळियो।

हजार बार विचार्यू, कही दऊं के फ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड छे तुम्हारी, पण सपना तूटी जवानो डर दिल माथी गयो ज नहीं।

2:35 हुए हैं। श्रोताओं नमस्कार आप सबको। आप जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आज बुधवार 6 मई 2026 और प्रस्तुत है आपकी पसंद प्रोग्राम आपका

मनपसंद प्रोग्राम जिसे आप बेहद पसंद करते हैं। जी हाँ, शुरुआत में आपने सुना हमने एक बर्थडे सॉन्ग चलाया, क्योंकि आज एक खास दोस्त का जन्मदिन है। नाम नहीं बताएंगे क्योंकि वो इस समय सुन रहे हैं। चलिए, और साथ ही साथ में आप लोगों की फरमाइश भी हम पूरी करेंगे। और नंबर है 4028085402808085। मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए 4 बजे तक। बहुत ही सुंदर सफ़र है दोस्तों, और इस सफ़र में आप लोग साथ मिलकर, जी हाँ, हम सफ़र बनकर साथ देंगे। ज़रूर फ़ोन कीजिए और मैसेज कीजिए, हम आपका इंतज़ार करते हैं। और ये जो गाना है हम चला रहे हैं रोहित जी के लिए, जो हमें सुन रहे हैं बुबासा से, और साथ ही साथ में ध्रुव के नाम जो इस समय ड्राइव कर रहे हैं, जी हाँ, गाड़ी चला रहे हैं और हमारा जो प्रोग्राम है सुन रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, ज़िंदगी के सफ़र बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाजवाब है। और साथ ही साथ में ये गाना उन सभी लोगों के लिए जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ AM2 के साथ।

आपकी पसंद। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपकी पसंद प्रोग्राम हम जारी रखते हैं, बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर रेहाना जी जो इस समय हमें सुन रही है नोटरडम से, गाना वो मांग रही है फिल्म भरोसा से लिया गया। चलिए गाना खासकर वो डेडिकेट कर रही है अपनी सहेली माला फाउडो के लिए और साथ में सहेली सुरेखा के नाम।

आपकी पसंद। आपकी पसंद प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर अगला गाना अनवर फिल्म से लिया गया और ये गाना जाएगा संगीता जी के लिए जो हमें सुन रही हैं क्यूपिप से। गाना वो मांग रही हैं अपने बच्चों के लिए और पूरे परिवार के नाम।

राह में उनसे मुलाकात हो गई और देखते देखते न जाने क्या से क्या हो गया। 2:53 हुए हैं और अगला गाना 90s का ये खूबसूरत गाना अक्षय और रीना के लिए और साथ ही साथ में अर्जुन जी जो रहते हैं कटरबोन गाना वो मांग रहे हैं अपने मंगेतर के लिए श्यामा। चलिए और इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे 3 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर। हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

0: आइए सुनते हैं समाचार करोना के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, सभी को नमस्कार। आर्यन नावामागी ने आज सुबह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। ये समारोह स्टेट हाउस में लगाया गया, जिसमें सरकारी सदस्यों के साथ साथ उनके परिजन भी उपस्थित रहे। नई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए ये नामजदगी देश के इतिहास में अंकित हो गई है और उनके 40 से अधिक वर्षों की लंबी राजनीतिक यात्रा को गौरव प्रदान करती है। आर्यन नावामागी ने कहा कि वो जनता के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आर्यन नावामागी ने राजनीति में अपना करियर सिर्फ 21 साल की उम्र में शुरू किया था। 1982 में वे चुनाव क्षेत्र नंबर 14 सावान रिवियनुआ से निर्वाचित हुई थी। उन्होंने नापियो यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और प्रबंधन में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लगातार अपने राजनीतिक करियर में प्रगति की। वे सांसद से मंत्री बनी, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद तक पहुंची। आर्यन नावामागी का जन्म शागोसियन माता पिता के घर हुआ था और उनका बचपन डकर्स फ्लैट में बीता था। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस ऐतिहासिक क्षण पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उनके शासन में पहली बार किसी महिला को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पद पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने इसका भी उल्लेख किया कि ये पहली बार है जब शागुस समुदाय का कोई प्रतिनिधि इस पद तक पहुंचा हो। एमएमएम के अध्यक्ष रेजाउद्दीन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आर्यन नावामागी को सौंपी गई जिम्मेदारी पर वो खरी उतरेंगी। वहीं शागुस रेफ्यूजीज दल के अध्यक्ष ओलिविए बांकुल्ट ने इस नियुक्ति पर गर्व व्यक्त किया। कनाबिस पर नाडक के टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की बैठक आज काठरबोन के गोलक्रॉस होटल में लगाई गई। बैठक में एनजीओ, सरकारी प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हुए। बढ़ते सिंथेटिक ड्रग्स के बीच मौजूदा नीतियों पर पुनर्विचार की जरूरत पर गौर किया गया। विदेश में डोनाल्ड ट्रंप ने कल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जहाज़ों को एस्कॉर्ट करने की अपनी योजना को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की। अमेरिका के ओहायो राज्य में गवर्नर चुनाव के लिए भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन जीत लिया और भारत में बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हिंसक घटनाओं का सिलसिला जारी है। इसी के साथ समाचार समाप्त है। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। रॉयल रोड पेंडेरोश में 55 साल के 55-year-old श्री राजकुमार रामेश्वर, श्री राजकुमार रामेश्वर जो दीपक से जाने जाते थे और पहले पुलिस चीफ इंस्पेक्टर थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं कल दिन के 10 बजे इनकी पत्नी श्रीमती सुलक्षणा रामेश्वर के मकान गुटख्वायाल पेंडेरोश से उठाकर दाह संस्कार के लिए पेंडेरोश के स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो आते 10 AM और रामजीत लेन बाली

पत्थर के मकान गुटख्वायाल प्लेन दे गोश से उठाकर दाह संस्कार के लिए प्लेन दे गोश की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM और रामजीत लेन बाली

Ramnaren Lane and Pass Offre, Bejton Bow Lane, Alley Good, Gopala Lane, Doulor Lane, Rue du Bambou, Rue Nyon, Rue Souffler, Abdulrazak Mohamed, Or Chemin, Grove, Or Industrie Bovalon, qui est un valo qui est sujet qui a jata hai, qui Guruvar 7 mai 2026, सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. और विलाज बाग पिची जुली घन रोजाली के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि गुरुवार 7 मई 2026 सुबह के 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी. सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है.

आपकी पसंद। तीन बजकर छः मिनट हुए हैं प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। नमस्कार आप सबको, मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभा रही हूँ यहाँ पर AM2 पर रेडियो मॉरिशस पर, और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम। जी हाँ, इस कार्यक्रम को हम जारी रखते हैं और आप ये सुन पाएगा 4 बजे तक। जी हाँ, और यहाँ पर गाना हम चलाने जा रहे हैं खासकर शकुंतला जी के लिए, वो रहती हैं लॉन्ग माउंटेन। गाना खासकर वो मांग रही हैं अपनी भाभी गायत्री के लिए, बेटा अजय जो रहते हैं नुवेल फ्रांस। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत ही प्यारा गाना है, सन ऑफ इंडिया से लिया गया।

0: की पसंद।
1: कितना हसीन मौसम है जी। हाँ सच में ये मौसम बहुत ही हसीन है और वो और हसीन हो जाते हैं जब आसपास के लोग खूबसूरत होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, हमेशा इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो ये समा और सुंदर हो जाता है। तो यहाँ पर आज़ाद फिल्म से लिया गया ये प्यारा सा गाना हम चलाने जा रहे हैं धनी जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं इस समय और वो शायद सी साइड पर हैं। जी हाँ, आउटिंग करने गए हैं अपने दोस्तों के साथ और हमें सुन रहे हैं। तो चलिए, हमने आपको भूला नहीं है, आपका गाना चल पड़ा।

0: दिन बजकर 16 मिनट हुए हैं और यहाँ पर जी हाँ, सत्य पे सत्ता फिल्म से लिया गया ये गाना जाएगा ज्योति जी के लिए जो हमें सुन रही हैं यूनियन पॉक से। गाना उनके लिए, प्रीति के लिए, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला और उनके परिवार के लिए।
1: Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm.

आपकी पसंद। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करे जिंदगी है, हमें तो जीना ही पड़ेगा, दुख हो या सुख हो, है ना। कब्जा फिल्म से लिया गया मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ में, और ये गाना हम चला रहे हैं खासकर मोडल बेयर के रहने वाली हमारी प्यारी अनिता जी के लिए। गाना वो मांग रही है करुणा अमृता ही तू परिवार लाल जी परिवार। तो चलिए कब्जा का ये खूबसूरत गाना आप लोगों के नाम जाएगा।

0: आपकी पसंद।
1: तीन बजकर 28 मिनट हुए हैं और यहाँ पर विश्वानी दुमन जी जो हमें सुन रही है वाकवा से, गाना वो मांग रही है बहन इंदिरा, शारदा, नीला, सहेली प्रतिभा, शोभा और गीता गजाधर के लिए।

3:10 हुए हैं। यहाँ पर हमें सुन रही है वाकवा से प्यारी सुदेवी जी और गाना खासकर मांगती हैं त्रियोले के रहने वाली दीदी ललिता कुशल फैमिली के लिए, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा और साथ में दिवीना, मालेंगा के रहने वाले अनुषा जी, किरण, याशना, नीरज और सभी राम रतन, राम गुलाम और कुआहू परिवार के लिए। रजनीगंधा फिल्म से लिया गया

आपकी पसंद। मुकेश साहब की आवाज़ में ये गाना। चलिए अब हम सुनेंगे एक और प्यारा सा गाना 1958 में रिलीज़ हुई फिल्म रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ों में, देख हमें आवाज़ आना देना। और यहाँ पर ये गाना हम चलाने जा रहे हैं सरिता जी के लिए और वो रहती है कैटोबोन। चलिए गाना चल पड़ा आपके लिए।

एक से बढ़कर एक गीत आप लोगों की मांग पर 3:40 और यहाँ पर हमें सुन रही है यूनियन पार्क से विद्या जी। चलिए विद्या जी के लिए गाना हम चलाएंगे। खासकर गाना वो मांग रही है चाची कुमारी, बहन सती, सुरेखा और बबीता के लिए।

आपकी पसंद। तीन बजकर 50 मिनट होने को है और प्यारे दोस्तों यहाँ पर प्रेमिला जी जो गाना मांग रही हैं अपनी बहन के लिए जो 45 साल की शादी की सालगिरह मना रही हैं श्यामा और विनोद भी सुनत। तो चलिए आपको हम ढेर सारा प्यार देते हैं और आशीर्वाद भी पूरी एमबीसी टीम की ओर से।

3:54 हुए हैं। आइए सुनते हैं सीबी की ओर से एक विज्ञप्ति। हिविया दिगाले के आसपास के इलाके होथवायाल, फुडम, लबाहाक रोड, रेलवे रोड, बानसिंग रोड, सोफू रोड, गोपाल लेन, माता बदल रोड, एसएसओ रोड के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि गुरुवार 7 मई 2026 सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। आपकी पसंद चलिए प्यारे दोस्तों 3:55 हुए हैं और यहाँ पर हमने सुन रहे हैं मुकेश मोहन जी और गाना वो मांग रहे हैं अपने लिए और प्यारी पत्नी देवयानी के लिए जो रहते हैं और ये तवाक्वा। बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए और गाना हम चलाएंगे चांदनी फिल्म से लिया गया और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला। आपने साथ दिया बहुत धन्यवाद। जी हाँ हमेशा की तरह ऐसे ही गुनगुनाते रहिए। ठीक 4 बजे आप सुन पाएंगे मराठी प्रोग्राम शिरीष रामा की प्रस्तुति में और मैं उषा कौर आप लोगों से मुलाकात होगी शाम के 5 बजे अंताक्षरी प्रोग्राम में। तो कहीं मत जाइएगा, MBC रेडियो के साथ जुड़े रहिएगा।

0: रही रेडियो वजह मुस्कुराने की।
1: जरा सा झूम ले आप, जरा सा घूम ले आप, क्योंकि उषा जी और रोशन यहाँ पर आ गए हैं। 5:15 हो गए हैं, आप जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: नमस्कार देवी और सज्जनों, प्यारे प्यारे श्रोताओं।
1: नमस्कार श्रोताओं।
0: जी हाँ, आज है बुधवार और इस महीने का पहला बुधवार।
1: पहला बुधवार है।
0: जी हाँ, जब कोई गुनगुनाता है और कोई गाता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो चलिए, आज का जो विषय है बड़ा ही पहला विषय ऐसा हमने रखा है। आप गाएं हम गुनगुनाएं। यानी हम एक गाना गुनगुनाएंगे और आप लोग उस गाने को पहचान कर आप लोगों को गाना पड़ेगा। और पहला गाना आप अपनी पसंद का गाइएगा और दूसरा गाना उषा जी गुनगुनाएंगी और आप लोग पहचान कर उसे गाना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे कि मैं एक गाना गुनगुनाता हूँ, देखता हूँ कि उषा जी जानेंगे या नहीं।
1: अच्छा।
0: चलिए।
1: सांसों की जरूरत है जैसे।
0: क्या बात। तो ऐसा ही ये गाना चलेगा, ऐसा ही ये खेल चलेगा। तो आप खेलिएगा ये मजेदार खेल और दिलों से बढ़ाइए दिलों का मेल। नंबर क्या है उषा जी?
1: नंबर

0: 905 4028085 और जरूर जो घर पर बैठे हैं और गाना नहीं चाहते हैं तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं ऑन 5251705।
1: बिल्कुल, नंबर इससे ज्यादा और अच्छी तरह से क्या हम आपको एक्सप्लेन करें। बहुत स्पष्ट रूप से बहना ने कह दिया व्हाट्सएप नंबर या फिर फोन नंबर, तो आप ज्यादा देर न करें और पहला गाना तब तक आप लोगों के नाम जमाने के देखे हैं हमने रंग हजार। ये 90s के जो गाने हैं उषा जी, क्या कहें
0: क्या कह सकते हैं, उनमें तो इतनी सारी यादें।
1: लेकिन एक बात मैंने नोटिस किया है, एक नोटिस की है कि आपके जो प्रोग्राम होते हैं दिलों की आवाज जो हर मंगलवार की शाम को चलता है, ये प्रोग्राम ज्यादातर गाने 90s के होते हैं, क्यों?
0: क्योंकि 90s का जो दौर है ना वो तो जैसे क्या बोलते हैं ट्रांजिशन, हमेशा जो मैं बोलती हूँ बिटवीन 80s, जब एंड ऑफ 80s हुआ था तब 90s के जमाने शुरू हो चुके थे और इट वाज अ वेरी बिग चेंज फॉर द बॉलीवुड इंडस्ट्री।
1: बिल्कुल,
0: बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही
1: एक रिवॉल्यूशन हो गया था,
0: रिवॉल्यूशन
1: और क्रांति,
0: क्रांति एक एवोल्यूशन, बदलाव, चाहे फैशन, चाहे म्यूजिक हो, चाहे फिल्म हो, सब कुछ। और इसमें तो कई लोग 90s, जैसे 90s के बच्चे उस दौर से गुजर चुके हैं तो उनको याद होगा कि कैसे ये रिवॉल्यूशन हुआ था।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब 1988 में कयामत से कयामत तक रिलीज हुई थी तब एक नए किस्म का म्यूजिक आनंद मिलिंद ने लाया था।
0: और यही पर सब हिट गाने अलका जी, कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ति, ये सब जो कलाकार
1: हैं, सब जो नाम है,
0: फेमस हुए,
1: लोकप्रिय होने लगे,
0: उसी दौर से वो लोग सब फेमस हुए एक ही साथ।
1: बिल्कुल, उस जमाने में कंपटीशन तो था लेकिन सहयोग भी ज्यादा था।
0: सहयोग भी जी, बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: और यहाँ पर इतने सारे फोन कॉल्स आ चुके हैं
1: बातों बातों में
0: और लगता है कि आप बहुत ही
1: उत्सुक है
0: इस नए विषय को पार्टिसिपेट करने के लिए।
1: बिल्कुल,
0: तो हम लेंगे फर्स्ट कॉल। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
2: अरे नमस्ते, आप दोनों को, मैं
1: सरिता हूँ कटरबोन से। आपका स्वागत है सरिता जी।
2: धन्यवाद, आप लोग कैसे हो?
1: हम तो ठीक हैं, आप भी ठीक हैं?
2: मैं आज ठीक हूँ।
1: आज ठीक है,
2: सचमुच नहीं ठीक थी।
1: सॉरी। तो चलिए, अगर आप ठीक हो गई हैं थोड़ा बहुत तो आपकी पसंद का पहला गाना प्लीज, हम दोनों के लिए प्लीज।
2: ओके, तुमसे मिलके हम दम,
1: बहुत अच्छा।

0: जी हाँ, ये तो एसपी बालासुब्रमण्यम जी गाते हैं, केवल आशा जी यही करती हैं। तो कोई बात नहीं, आपके साथ दूसरा गाना, लेकिन आप पहले बहना आपके लिए गुनगुनाएंगी और आप गाएंगी। ओके, अब सुनिए सुनिए।
1: मैं जान गई।
2: ओके, जान गई।
1: जरा

0: गुड.
1: कहीं
0: क्या बात है.
1: ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। बहुत
0: बहुत अच्छा,
1: बढ़िया,
0: बहुत अच्छा.
1: तालियां। धन्यवाद
0: ताली आपके लिए सरिता जी. क्या बात
1: जी
0: है, हकीकत का गाना आपने गाया. और
1: जी
0: क्या, जैसे उषा जी ने बहुत बढ़िया तरीके से गुनगुनाया, आपने बढ़िया तरीके से भी गाया. ओके, धन्यवाद आपको.
1: ओके,
0: बाय.
1: बाय
0: हाँ,
1: बाय।
0: तो ये थी सरिता जी. उषा जी कौन है अब देखते हैं.
1: अब हम देखेंगे लाइन पर कौन है। हेलो हेलो
0: हेलो जी.
1: हेलो, नमस्ते उषा जी, रोशन जी, ठीक
0: नमस्ते मीनाक्षी जी.
1: हैं
0: कैसे,
1: आप? हम
0: ठीक
1: तो
0: है जी.
1: बिल्कुल
0: मैं
1: ठीक हैं, और
0: बिल्कुल
1: आप कैसी हैं?
0: .

0: अगर ठीक है तो पहला गाना आपकी पसंद का
1: हाँ जी, एक
0: गाय।
1: श्रिया घोषाल का गाना है,
0: ओके बड़े
1: ट्राई
0: गुड।
1: कर रही हूँ, नए गाने हैं।
0: अच्छा गाइए तो।
1: जी दिखती है रह सकोगी कब तलक ना।

0: क्या मिली।
1: बिल्कुल मीनाक्षी जी, रॉक और रानी की प्रेम कहानी यहाँ पर, मीनाक्षी और अंताक्षरी की प्रेम कहानी।
0: हाँ जी, ये तो बरसों का है।
1: बरसों का प्यार। तो चलिए, आपका पहला गाना सुपर डुपर हिट तो है ही, अब देखते हैं आप पहले उषा जी को सुनिए गुनगुनाते हुए, तब देखेंगे आपको गाते हुए।
2: चलो

0: अगर और गुनगुनाएंगी उषा जी तो आप जान जाएंगे।
1: मैं जानती हूँ ये गाना।
0: हाँ तो गाइए। ओ आयो यो
1: वो तो साधना का एक गाना है, नूतन का एक गाना।
0: नूतन का गाना,
1: नूतन का एक गाना।
0: ओ सुनिए।

0: हाँ वो तो मैं जानती थी, नूतन का एक गाना लिखी ना।
1: देखा आपने, कोई बात नहीं, हम हमने आपसे कहा गाने को गुनगुनाने को सिर्फ उषा जी गुनगुनाएंगी आज, लेकिन आप तो खुद गुनगुनानेगी। कोई बात
2: नहीं, धन्यवाद आपको मीनाक्षी, मिलते हैं बहुत जल्द,
0: बाय।
1: ओके बाय, ये थी मीनाक्षी जी फ्रॉम बुबासन, और लगता है आज का जो विषय है बड़ा ही रोचक है।
2: हेलो, एक और श्रोता है,
1: एक और श्रोता।
2: हेलो,
3: नमस्कार उषा बहन, नमस्कार भाई रोशन,
1: नमस्कार हरीश भाई, कैसे हैं आप?
3: इनकन्वालेसेंस।
1: इनकन्वालेसेंस क्या हुआ था आपको?
3: अनफॉर्चुनेटली।
1: ओह, अब आप ठीक हैं थोड़ा बहुत?
3: या
1: ओके ओके,
3: दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दैट स्पेयर।
1: ओके ओके ओके, आप ठीक हो जाएंगी, ऐसी हम दोनों दुआ करते हैं।
3: थैंक यू वेरी मच।
2: चलिए आपकी पसंद का कोई भी गाना सुनाइए।
3: आदत से मजबूर हूँ, सोनू निगम।
1: ओह वेरी गुड, गाइए।

0: आकाश पे
1: आकाश में बैठा
2: हुआ
1: हुआ
2: लिखता
1: लिखता
2: है
1: है
2: वो
1: वो
2: तकदीर।
0: आकाश पर
1: वाह,
0: बैठा हुआ तकदीर जो
2: जो
0: लिखता
2: लिखता
0: है
2: है।
0: वो ने उन्होंने आपकी तकदीर लिख दिया है। बहुत बढ़िया हरीश भाई, ऐसा ही आप
2: धन्यवाद
0: होते रहे।
2: आपको,
0: धन्यवाद,
2: शुक्रिया,
0: बाय
1: बाय
2: बाय।
1: बाय।
2: वैसे यहाँ पर हमने देखा है इंदिरा लौटन जी, आपको पता है ना कि ये अंताक्षरी प्रोग्राम है। सबसे पहले नमस्ते, आपको मैसेज आपने भेजा है कि आपका गीत चलाइए और गाना है आज हमें मालूम हुआ। वैसे ये फरमाइशों का प्रोग्राम नहीं है जी, आपको पता है ना, ये अंताक्षरी का प्रोग्राम है, क्योंकि आप तो हमेशा इस प्रोग्राम में
0: भाग
2: भागते
0: लेती रहती हैं।
2: भाग लेते हैं। तो यहाँ पर एक और श्रोता, हेलो
0: हेलो जी, नमस्ते।
2: हेलो
3: हेलो, नमस्ते रोशन जी, नमस्ते उषा जी,
2: नमस्ते
0: नमस्ते
2: जी, कैसे हैं
0: शोभा
2: आप?
0: जी, बाकवा
3: मैं
0: से
3: ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो?
2: बिल्कुल
0: ठीक है
2: ठीक।
0: जी। ओके, चलिए शोभा जी, आपका पहला गाना फटाफट गाइए।
3: घूंघट की आर से दिल भर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नजरों से नजर, सिंगार अधूरा रहता है दिल भर की आर से।
0: घूंघट के आर से दिल भर का। हाँ जी, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सुंदर गाना आपने गाया है।
3: ओके, धन्यवाद।
0: अब
2: हाँ
0: सुनिए गुनगुनाता हुआ, गुनगुनाती हुई उषा जी को।
3: जी।

0: याद आ रहा है
1: और याद आ रहा है आपको। अच्छा
0: लेकिन
1: गाइए तो,
0: ओके
1: आपके पास समय है अभी।
0: फिर से एक बार हो सकता है?
2: नहीं,
1: एक ही बार शोभा जी, इतनी प्यार। ओ
0: ओके ओके, कोई बात नहीं।
1: सुनिए,
2: आपकी
0: इनायत
2: आपके करम,
0: आप ही बताएं कैसे
1: देखा आपने।
0: भूलेंगे हम।
2: दिमाग पर
0: ओके,
2: जोर लगाना पड़ेगा।
1: कोई बात नहीं, लेकिन
0: कभी कभी हो जाता है,
1: भूल गई आप, कोई बात नहीं।
2: चलिए, थैंक यू सो मच। ओके,
1: बाय बाय।
2: आज पकड़े गए,
1: पकड़ी गए।
2: चलिए एक श्रोता है। हेलो
1: हेलो
3: हेलो, नमस्ते
1: नमस्ते।
2: आशा जी,
3: उषा जी,
1: उदय जी, अगर मैं आपसे कहूँ उदय जी तो क्या होगा?
2: आपकी तरह उदय
3: भाई। नमस्ते।
1: हाँ जी नमस्ते उदय भाई, कैसी हैं? कैसे हैं आप? ठीक
3: ठीक है, ठीक है।
1: ओके,
2: आपकी पसंद का गाना
3: टॉपिक अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये रियल अंताक्षरी
1: है। रियल अंताक्षरी, क्या बात है, बहुत अच्छा।
3: मुझे रहा नहीं गया,
1: उत्साह बढ़ाने के लिए।
3: चला गया।
1: हाँ जी बिल्कुल, उंगलियां खुद ब खुद फोन सेट पर। गाइए।

0: हम मर
1: जाएंगे जी नहीं प्या पाएंगे साथ जो तुम्हारा
0: साथ जो छोटा जो
1: जो
0: तुम्हारा तुम्हारा। सुंदर गाना आपने गाया है उदय भाई, बहुत।
1: मैं ट्राई किया 90s की गाना।
0: हाँ जी, कोई बात नहीं, होना चाहिए। अभी तो बहना ने कहा 90s का जो दौर था
1: हमने
0: कभी
1: इसीलिए
0: नहीं
1: मैंने
0: भूल।
1: कोशिश की
0: हाँ,
1: ये तैयार कर
0: वो तो
1: दी।
0: बहना ने आपको प्रभावित कर दिया
1: हाँ
0: 90s गाने के लिए। अच्छा, कोई बात नहीं, अब आप ये गुनगुनाती हुई आवाज़ सुने और पहचानिए।

0: बहुत अच्छा उदय भाई, बहुत
1: अच्छा आप लोग ने मुझे मेरे साथ दिया।
0: अच्छा जी, हम तो यहाँ पर हैं।
2: जो आपने की बहुत ही बढ़िया है,
0: बहुत ही बढ़िया,
2: धन्यवाद आपको। चलिए,
3: सागर से गहरा है प्यार हमारा।
2: हेलो,
0: मुझे तो आपकी आवाज सुनाई दे रही है।
4: हेलो, नमस्ते
0: रोशन जी,
2: नमस्ते उषा जी,
0: नमस्ते आशा जी, नमस्ते। कैसी हैं आप?
4: मैं अच्छा हूँ, आप दोनों कैसे हैं?
2: बिल्कुल ठीक
0: ठीक है आशा जी। अच्छा, आपका पहला गाना?
4: जी, एक नाइटिस का गाना गाऊंगी।
0: ओके, गाइए।

0: जी हाँ, ये बात लिखी है दुश्मन ज़माना, लेकिन आपका जो ज़माना है अंताक्षरी का दुश्मन नहीं हो सकता। अच्छा, अब आप सुनिए।
1: वैसे मैं अपने श्रोता को ये दिलाना चाहती हूँ कि जो भी गाना मैं गुनगुना रही हूँ, ये गाने तो मैं अपने प्रोग्राम में अवश्य अपने प्लेलिस्ट में हमेशा इंक्लूड करती हूँ, तो ये अगर आप सुनते हैं प्रोग्राम तो इन गानों को आप ज़रूर पहचानेंगे,
0: झट से पहचानेंगे ना।
1: तो चलिए

0: बात,
1: बिल्कुल आपने पहचान लिया है आशा जी।
0: सिर्फ
1: और
0: धुन पहचान लिया उन्होंने, लेकिन जो बोल है
1: उसे
0: ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम गुनगुना रहे हैं। अगर आप लोग भी गुनगुनाएंगे तो क्या होगा, आपको बोल पहचानना होगा।
2: मुझे याद था पर बोल नहीं।
1: ओके, सुंदर सा गाना है, तलत महमूद जी ने गाया है।
0: थैंक यू आशा जी।
1: ओके बाय।

0: सर एक श्रोता है। हेलो
1: हेलो।
2: हाँ जी जय भाई नमस्ते।
0: नमस्ते
1: भाई। हाँ। भाई बहन आपको दोनों का नमस्कार।
2: नमस्कार लेकिन ओके लेकिन आपका जो रेडियो सेट है प्लीज उसे आप धीमी कर दें प्लीज वॉल्यूम।
1: तो हाँ आपको सुनाई नहीं देगा आपको गाना।
2: नहीं, आपको सुनाई नहीं देगा लेकिन हम आपको अप्रिशिएट कर पाएंगे अगर आप रेडियो बंद कर देंगे तो आपकी आवाज़ ज्यादा।
1: थोड़ा
2: जल्दी कर रहा।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ भाई चल ले।
1: हाँ,
0: अरे आओ अब सुन, पहला गाना तोहर पसंद के गाओ, लेकिन स्थाई गई है, अंतरा नहीं गई है। अरे गाओ।
1: देख लिया मैंने किस्मत का तमाम।

0: देख लिया मैंने किस्मत का तमाशा देख लिया।
1: बहुत सुंदर सा गाना आपने गाया, किस्मत का तमाशा आपने
0: कितना गाए
1: देखा।
0: भैया, लेकिन अपना
1: हाँ
0: इजाजत नहीं दे हुआ था ना।
1: नहीं दका कर, वो खेल है
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ हाँ
1: सभी
0: ठीक
1: के
0: है
1: साथ
0: भैया।
1: मौका दे के ना भाई।
0: हाँ हाँ
1: तू
0: हाँ
1: तो हमेशा भाग लेते रहेला, ऐसे
0: हाँ
1: नहीं बा कि कबू हम नहीं तुम्हारा मौका नहीं दे ला जा। अच्छा
0: हाँ ठीक है भैया।
1: तो
0: आज
1: चला,
0: एक
1: अब
0: दूसरा
1: उषा जी के गुनगुनाते हुए सुना और
0: हाँ
1: पहचाना।
0: तैसा जोर से सुनाइए।
1: हाँ काहे नहीं।

0: बहुत सुंदर सा गाना है, गाइए तो। तुम्हारे पास अभी समय बा।
1: गाना था
0: भैया नया हुआ था सुना अच्छी तरह से, बहुत अच्छा, बहुत फासिल बाई था। कोई बात नहीं, लेकिन किशोरदा का गाना है, किशोरदा का गाना सुना सुना।
2: प्यार जब ना दिया
1: गीतवा

0: ये है ना।
1: हाँ हाँ
0: ओके,
1: भाई,
0: अच्छा,
1: चलिए,
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: आपको।
1: आपको। हाँ, हाल बाड़ी है, कबो
0: कोई बात नहीं,
1: हो
0: कोई
1: जाए
0: बात नहीं जय,
1: सबका
0: लेकिन आप भाग ले हुआ भैया जी, बहुत बहुत
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद तुम्हारा। ओके,
1: धन्यवाद भैया।
0: धन्यवाद।

0: आप हमसे कभी पर्दा न करें, क्या कहते हैं उषा जी?
1: जी बिल्कुल। और यहाँ पर कौन है? हेलो
0: हेलो जी, रेडियो सेट क्यों हेलो कह रहा है? आपको हेलो कहना चाहिए, रेडियो सेट को बंद कर दें प्लीज।
2: अच्छा।
0: ओके, जल्दी जल्दी जल्दी स्प्रिंट करें।
2: नमस्कार भाई,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार, आप कौन?
2: मैं उषा रानी बोली, तो उषा को नहीं पता।
0: अच्छा, माला जी, माला जी कैसी हैं आप? माला जी,
1: अच्छा, वो प्यार से हमें उषा रानी बोलती है तब पहचान लेते हैं।
0: ओके,
1: अच्छा,
0: दुलार। ओके, आप तो बहुत लोगों की दुलारी हैं।
1: कभी कभी लड्डू बोलते हैं, कभी कभी क्या बताने, उषा रानी।
0: माला जी, सो स्वीट ऑफ यू, इतना स्वीट कि आप मिठाई बांटी फिरती हैं। हाँ, और आपके मुंह से अभी शहद टपक रहा है। माला जी,
1: सुनाइए आपका
0: पहला गाना।
1: पहला गाना,
2: पहला गाना रोते रोते गाऊंगी, मैं बहुत हंस चुकी हूँ।
0: अच्छा अच्छा, अच्छा,
2: आपको पता है मैं क्यों रो रही हूँ? अभी तक मैं कैसे कहते हैं, आधे ही हूँ।
0: अच्छा, क्या हो गया इसे?
2: छोड़ कर के दिल

0: पता चला?
1: हाँ जी
0: हाँ
1: पता चला।
0: पता चला ना, क्यों रो रही हूँ?
1: आशा जी की
0: हाँ
1: आशा जी का देहांत हो गया ना, इसीलिए
2: चलिए,
1: वो तो हमारे दिल में मौजूद है।
2: मौजूद है हमेशा,
0: दिल में है, हमेशा
1: हाँ
0: रहेंगे।
1: बिल्कुल, उनकी आवाज़ तो अमर है, हालांकि उनका शरीर नाशवान है, लेकिन आवाज़ तो
0: हाँ
1: उनकी अमर है। अच्छा,
0: बहुत
1: ये
0: दुख की बात
1: रहा,
0: है।
1: बहुत दुख की बात है, लेकिन उस दुख को आपको झेलना नहीं है, उसे आपकी यादों में
0: हाँ
1: बसाना है उन्हें। अच्छा महाराज
0: जरूर।
1: जी, आप गाएं और उषा जी गुनगुनाएगी अभी।
0: अरे
1: बाप रे, नहीं
0: बाप
1: आप तो उन्हें कहते हैं उषा रानी। तो
2: चलिए
1: देखते
2: माला
1: हैं।
2: रानी जी
1: हाँ गुनगुनाए बहना।

0: गाइए।
1: मेरी जिंदगी में आकर
0: कवि की आवाज है। हाँ हाँ
1: मेरे
0: थोड़ा
1: आसानी के गीत हैं,
0: हाँ,
1: लेकिन बोल मुझे उतना दिमाग में नहीं
0: ये
1: आ
0: तो
1: रहा है।
0: आशा जी का
1: हाँ
0: गाया
1: जी,
0: हुआ गीत है।
1: हाँ
0: आशा जी का गाया हुआ गीत बिल्कुल। और आपने कल की आवाज़

0: का गाना गाया है ना।
1: हाँ
0: हाँ,
1: जी,
0: तो मेरी जिंदगी में आकर किसी मेहरबान ने आकर,
1: किसी मेहरबान आकर मेरी जिंदगी सजा दी।
0: सजा दी। बिल्कुल, आप भी एक मेहरबान हैं, आकर हमारी जिंदगी को आपने सजाया है।
2: बिल्कुल, हमेशा जब तक सांस रहेगी सजाते रहेंगे।
0: बिल्कुल, और
1: हाँ
0: आपने पहचान तो लिया गाना। क्यों ना ताली आपके लिए हम बजाएं।
1: ताली मार,
0: ताली मार, मार ताली मार।
1: चलिए, धन्यवाद आपको माला जी, बहुत
0: धन्यवाद,
1: प्यारी है,
2: धन्यवाद
1: हमारी प्यारी
2: आपको
1: माला जी, मिलते हैं बहुत जल्द।
0: बहुत जल्द मिलेंगे।

0: आज ऐसा पता नहीं क्या हुआ है, इतने सारे फोन कॉल
1: लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप गुनगुना रहे हैं, वो गा रहे हैं साथ साथ गा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ड्यूएट गाना तो कठिन है इसीलिए वो अगर आप गुनगुना रहे हैं तो वो गा रहे हैं। चलिए देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो,
0: वो तो चले गए,
1: एक नहीं तो दूसरा से ही।
0: हेलो हेलो
1: हेलो, हाँ जी नमस्ते।
2: हेलो रोशन जी,
1: राधा जी। हेलो,
2: हाँ जी मैं हूँ। हाँ हाँ रोशन जी,
1: हाँ
2: उषा जी को भी मेरा नमस्कार।
0: हाँ, नमस्कार
1: नमस्कार। आपकी आवाज लगता है थोड़ा उसमें गले में खराश है क्या?
2: थोड़ी बीमार हूँ, हाँ जुकाम हो गया है।
1: ओह सो सॉरी।
0: कोई बात नहीं, आप अपना
1: पहला गाना
0: सुनाइए, आपकी पसंद।
2: हाँ मैं कोशिश करती हूँ। जिंदगी इत्तफाक है, कल भी इत्तफाक थी, आज भी इत्तफाक है, हर खुशी इत्तफाक है।
1: बहुत अच्छा, ये रहा आपका पहला गाना आपकी पसंद का। अब आप सुने और पहचानिए।
0: चलिए जो दूसरा गाना है सुनिए गौर से।
2: सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे
1: क्या बात है,
2: सजना के लिए।
1: आपने तो मौका नहीं दिया गुनगुनाने को, तुरंत गाने लगी आप तो। वाह बहुत सुंदर सा गाना आपने गाया।
2: शुभ संध्या, शुभ रात्रि,
1: शुभ रात्रि आपको भी। और सजना है मुझे सजना के लिए, ये जो गाना है फिल्म सौदागर का गाना है बहना।
0: और और उसका जो नया वर्जन है आजकल टिकटॉक पर ट्रेंड है, सब
1: ट्रेंड,
0: ये इस पर डांस कर रहे हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्ते उषा जी, नमस्ते रोशन जी।
0: देवी जी
1: कैसी हैं?
3: ठीक हूँ।
1: हाईलैंड्स की देवी जी,
3: जी।
1: ओके शुरू कीजिए।
3: नगमे हैं,
1: अच्छा
3: शिकवे हैं, किस्से हैं, वादे हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं तेरे चले जाने के बाद, यादें यादें।
1: जी हाँ, यादें का टाइटल सॉन्ग आपने गाया है, बहुत अच्छा। अच्छा ये रहा आपका पहला गाना, अब आप सुनिए, बहना गुनगुनाएंगी और आप गाएंगी।

0: गाइए।
1: याद आया आपको?
2: वो शब्द नहीं आ रहा है।
1: ओ, अलका याग्निक जी की आवाज में बहुत सुंदर सा गाना है। आप कोशिश करें, आपके पास समय है अभी।
2: हाँ, शब्द नहीं आ रहा है।
1: अभी तो मैंने कहा उषा जी को गुनगुनाने के।

0: जरा, ठीक है जी
1: याद
0: सुदेवी
1: आया
0: जी?
1: आपको?
2: नया गाना है ना?
1: नहीं, इतना ज्यादा नया
0: नहीं,
1: नहीं
0: बिल्कुल
1: है।
0: नहीं, क्योंकि एक फिलोसॉफिकल सॉन्ग, भावगीत है। हम अपने प्रोग्राम में सुबह सुबह हमेशा ये ऐसे गाना
1: गाना
0: डालते हैं।
1: चलाते हैं बिल्कुल,
2: हाँ
1: या
2: हाँ
1: तो नई सोच के
0: हाँ
1: दौरान
0: नई सोच।
1: और M3
2: अरे
1: पर
2: सही
1: भी।
2: बात है,
1: देवी
2: सही
1: जी
2: बात
1: बहुत
2: है।
1: धन्यवाद आपको।
0: धन्यवाद
1: ओके
0: आपको।
1: बाय।

0: जी हाँ, सरगम नोट्स। हाँ जी,
1: हेलो,
0: चलिए देखते हैं अगला श्रोता। हेलो
1: हेलो
2: हेलो, नमस्ते उषा जी और रोशन जी।
1: नमस्ते कविता जी।
0: कविता जी, हंसती हुई मुस्कुराती हुई कविता जी,
1: हमेशा जोश से एंट्री मारती है।
0: बिल्कुल, क्या एंट्री मारी आपने।
1: कैसी हैं आप?
0: ठीक है,
2: मैं ठीक हूँ, और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक
0: हैं।
1: हम भी ठीक है। पहला गाना सुनना ये कवि।

0: उलझन है वो सुलझ जाएगा।
1: हाँ,
0: ओके, तो ये
1: उलझन में भी
0: रहा
1: हंसना चाहती है।
0: आपका हौसला, हम बढ़ाएंगे, क्यों नहीं।
1: धन्यवाद।
0: अच्छा, ये रहा आपका पहला गाना, अब आप सुनिए और पहचानिए।

0: सफर
1: ओके
2: रोशन जी के सफर
1: हाँ जी हम दोनों के सफर
0: आप लोग हमेशा हम कहते रहते हैं हम सफर बनकर साथ दीजिए
1: इस सफर में आप लोगों का हसीन साथ है
0: थैंक यू बाय बाय कविता जी
1: बाय आपने ये गाना गाया और मुझे अलका याग्निक की आवाज़ सुनकर बड़ा ही अफसोस लग रहा है इतनी सुंदर आवाज़ वो नहीं गा पा रही आजकल फिर भी जिंदगी का नाम है मुस्कुराना इससे बहुत हल प्राप्त हो जाते हैं देखते हैं ईश्वर उनकी रक्षा करें और उनका जो उनकी जो समस्या है जल्द से जल्द सुलझ जाए चलिए अब देखते हैं अगला श्रोता है कौन
0: हेलो
3: हेलो नमस्ते जी
0: नमस्ते जी
1: अनीता जी कैसी हैं आप ओके अनीता जी गाइए पहला गाना
3: हाँ

0: गवाह।
1: जी हाँ, चांद तारे तो गवाह हैं कि अनीता जी ने क्या खूब गाया। चलिए, ये दामिनी का गाना आपने गाया, अब देखते हैं कि आपको पता होगा या नहीं।

0: गाइए।
1: सुना ले।
0: दिल की ए धड़कन चहरा। ओके, बहुत ही आसान सा गाना आपको बहना ने दे दिया। ओके, अच्छा है, बहुत अच्छा है, और मुलाकात फिर से होगी हमारी। ओके,
2: धन्यवाद आपको,
0: बाय।

0: जी हाँ, इसी गाने के साथ अनीता जी के साथ ही आज का अंताक्षरी प्रोग्राम समाप्त हो गया। हम जानते हैं कि और लोग फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, समय यूं ही निकल गया। और आज का जो विषय था बड़ा ही रोचक था। उषा जी ने क्या गुनगुनाया और आपने क्या गाया, वाह, लगते हैं कि इसका पार्ट टू रखना चाहिए। तो हम वादा करते हैं कि अगले महीने हम ये प्रोग्राम अवश्य, ये जो फॉर्मेट है, इसे अडॉप्ट करेंगे। तो चलिए उषा जी, अब आपकी बारी है। एक छोटा सा गाना अपने श्रोताओं के लिए, अपने चाहने वालों के लिए आप गा लीजिए प्लीज।
1: और हमने ज्यादा तैयारी नहीं की है, लेकिन ये जो गाना हमने सुनाया, गुनगुनाते हुए सुनाया, वो
0: अनपढ़ वाला गाना।
1: हाँ, okay. अनपढ़, वो ही गाना गाऊंगी, अंतरा से शुरू करूंगी।
0: ओके
1: okay. जी

0: अच्छा
1: क्या बात है। जी हाँ, हमारी नजरों ने पहचान लिया है कि उषा जी ने क्या खूब गाया है।
0: धन्यवाद। और मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ जाने से पहले, ये गाना पहले मैं कभी नहीं गा पाती थी क्योंकि इसमें इतना सारा काम है, रियाज के साथ रोज उसको प्रैक्टिस करती रही। आज मैं ये गा पा रही हूँ, उसमें भी मैं कमियां महसूस
1: हो रही है थोड़ी बहुत,
0: कि ये गाना मुझे और ठीक करना है।
1: बिल्कुल, ऐसा ही कलाकार का जीवन है, ऐसा ही कलाकार की अदा है कि जितना भी अच्छा गाता हूँ, अच्छा करता हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें कहना है कि मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ। यही है सादगी, यही है डाउन टू अर्थ एटीट्यूड।
0: और यहाँ पर हमारा जरी है जो हमें सुन रही है, पेचित खैत से प्यार भरा नमस्ते, शुरू से मैं कोशिश कर रही हूँ। कोई बात नहीं, आपने सुना और जो प्रोग्राम हमने प्रस्तुत किया है खास कर आप लोगों के लिए है। और यहाँ पर एक महिला है, वो है प्रेमिला जी। मेरे ख्याल से आप लोग लाइव टिकटॉक पर कब आएंगे? जल्दी,
1: बिल्कुल। हाँ जी, सस्पेंस को हम दूर करेंगे, लेकिन थोड़ा इस सस्पेंस को आप लॉस्ट होने दें।
0: फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको वो हमारा जो पेज है उसको लाइक करना, फॉलो करना पड़ेगा पहले। जितने फॉलोअर्स हम मिलेंगे, फिर उतने ही जल्द हम टिकटॉक लाइव कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तुम नहीं कहेंगे अभी, लेकिन आप लाइक कीजिए बहुत ज्यादा, तब हम आएंगे टिकटॉक पर आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए।
0: थैंक यू।
1: तब तक के लिए दोनों की ओर से हमारा नमस्कार, आदाब और शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि आपको।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: 6 बजे हैं, समय हुआ है समाचार बुलेटिन का। नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। आगिया नवाब आगी ने आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से शपथ ग्रहण की। उन्होंने कहा कि वो जनता के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस ऐतिहासिक क्षण पर खुशी जताई और कहा कि उनके शासन में पहली बार किसी महिला को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पद पर नियुक्त किया गया। ये पहली बार है जब शागुस समुदाय का कोई प्रतिनिधि इस पद तक पहुंचा हो। इस सप्ताह मूडीज की प्रकाशित एक प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया कि मॉरिशस ने बजट सुधार के क्षेत्र में अपने पहले ठोस प्रगति दर्ज की। बजट घाटा पिछले वर्ष के 9.3% से घटकर फरवरी 2026 तक 5.5% हो गया। विदेश में कनारिया आइलैंड्स के राष्ट्रपति ने स्पेन सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें हंटा वायरस संक्रमण से प्रभावित डच जहाज एमवी होंडियस को द्वीपों में रुकने की अनुमति दी गई है। और अब समाचार विस्तार से। आगिया नवाब आगी ने आज सुबह स्टेट हाउस में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 ग्रैंड रिवियर नॉर्थ वेस्ट पोर्ट लुइस वेस्ट के सांसद और जेंडर क्वालिटी मंत्री ने इस पद पर पहुंचकर देश के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा है क्योंकि वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी हैं। ये समारोह प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों और उनके करीबी लोगों की उपस्थिति में लगाया गया। नई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अनुसार वो इस जिम्मेदारी को गणराज्य के लोगों के हित और कल्याण के लिए निभाएंगी और ये उनके लंबे राजनीतिक सफर का एक महत्वपूर्ण मुकाम है।
2: मॉरिशस गणराज्य की पहली महिला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनकर उन्होंने इतिहास में एक नया पन्ना मोड़ लिया है। आज गणराज्य के राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और अन्य मेहमानों की मौजूदगी में आगिया नवाब आगी ने शपथ ली।
3: आई विल बी ए ट्रू एंड फेथफुल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर।
2: नई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए ये पद उनके 45 वर्षीय लंबे करियर का फल है जो मॉरिशस महिलाओं के लिए एक उम्मीद भी है।
3: Je crois que dans l'unité nationale, nous pouvons faire progrès. Et pour moi, l'unité nationale n'est pas une option.
2: मुझे यकीन है कि राष्ट्रीय एकता में हम तरक्की करेंगे। मेरे लिए कौमी इत्तेहाद एक उपाय नहीं बल्कि एक जरूरत है। एकजुट होकर ही हम आगे बढ़ सकेंगे। मैं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने नया इतिहास लिख दिया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम की बदौलत हम महिलाओं ने एक

0: नया चरण पार किया। एक महिला को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अहदे पर देखकर सभी मुस्लिम महिलाओं को उम्मीद मिल गई जो देश की सेवा करना चाहती हैं। हमने नई तारीख लिख दी है। मैं अपने मेंटर को याद करती हूं, जिनके साथ करीब 45 सालों से मैंने ये सफर तय किया, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुन लिया, लेकिन मैं वही राह पर चल रही हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाई थी।
1: Au service de notre pays. Aujourd'hui, nous créons l'histoire. Moi, j'ai envie quand même d'une pensée spéciale à mon mentor, qui, avec qui je suis cheminée pendant près de 45 ans, mais qui malheureusement a choisi une autre voie. Moi, je suis continuée dans la voie qu'il a montrée moi là.
0: प्रधानमंत्री ने अपनी नई डेप्यूटी की काबिलियतों पर भरोसा करने की बात की। सरकार में ऐसे पद पर शागोसियन मूल की महिला को फायज करना एक बड़ा संदेश है।
2: Un poste extrêmement important, poste de député par ministre, une rivine et une madame qui toute seule la vie fin combat pour Bandimoun, pour justice sociale et qui pour la justice dans Maurice. Et ce parcours, il est élu pour la première fois à 21 ans. Et elle a une ligne droite. Et non seulement il y a une madame, il y a aussi une chagossienne qui est très importante dans le contexte qui nous peut guider aujourd'hui. Moi, je suis bien content qu'il m'ait gagné un lit comme mon numéro D. Je connais sa capacité, je connais sa coolness quand il prend ma décision et je connais son discours. Donc, je suis bien content et pour l'île Maurice, nous sommes bien fiers.
0: नई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए ये भावुक घड़ी रही, एक ऐसा सफर जो कटिबद्धता और लगन से रहा हो।
3: एमएमएम के अध्यक्ष रेजा उतिम ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अरियाना वामागी को सौंपी गई जिम्मेदारी पर वो खरे उतरेंगी। वहीं शागुस रेफ्यूजीज दल के अध्यक्ष ओलिविया बांकुल्ट ने इस नियुक्ति पर गर्व व्यक्त किया। चलिए देखते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं।
4: ये एक ऐतिहासिक घड़ी है। पहली बार एक महिला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद संभाल रही हैं। उनके सहयोगियों ने इसकी सराहना की।
5: मैडम टू बन जन फी कि मोरिस इना कौ गैन अपॉर्चुनिटी कौ पर्सिवेरे वो आरिवे
6: Le fait qu'il y ait Ariane d'origine chagossienne lui montrait vraiment que la République de Maurice lui donne sens à tout le monde.
7: Historique pour Maurice, historique pour les femmes, historique pour un maman.
8: C'est une madame qui fait doucement, elle fait monte l'échiquier politique. Surtout une madame qui sort aussi dans une descendante de la communauté chagossienne. Mais ça fait nous une grande fierté.
9: C'est un enfant travailleur, c'est un enfant de cœur ça. Okay? Alors les rannes sur accession.
4: सड़कों पर लोगों ने इस पर गर्व जताया।
10: Étant donné que moi une femme aussi, moi bien fière.
7: Ça se voit que oui, les femmes ont l'opportunité ouverte comparée par avant.
4: उम्मीदें बड़ी हैं, शायद बहुत बड़ी, क्योंकि वे एक महिला हैं।
11: Il est bien fiché là pour madame, ben enfant tout ça là, maltraitance, qui lui met un lot, un odeur.
10: Même travail qui ban zom zot salaire un peu moins moi t'a content considère zot comme tout zom avec femme égalité.
4: ये एक दोहरा प्रतीकात्मक नियुक्ति है। अरियाना नावामारी अपने भीतर सगोशन जरे संजोई हुई है।
12: Nous jouons ensemble, je veux dire moi avec Ariane, mais aussi moi fière, tu bonne femme sagoshen fière qui nous l'invite. C'est une pierre menée et elle est bien, moi bien content.
13: Les enfants de la communauté sagoshène et occupe le poste de député premier ministre et montrer qu'il nous l'attachement à la République de l'île Maurice et surtout la République de l'île Maurice reconnaît un ban sagoshien comme un mauricien et nous très honoré par ça.
14: Moi, je suis bien content, je suis fier pour lui qu'il y ait des enfants sagoshiens. Après, Oriane, tout le temps, il aime bien travailler dans ce partout, mais il peut faire bien. pour espérer les pour travailler la population.
4: इस नॉमिनेशन से एक नया चरण पार किया गया है, शायद संभावनाओं की ओर एक द्वार खुल गया है।
3: ये उल्लेखनीय है कि अरियाना वामाही ने राजनीति में अपना करियर सिर्फ 21 वर्ष की उम्र में शुरू किया था। 1982 में वो चुनाव क्षेत्र नंबर 14 सावान रिवियन वो से निर्वाचित हुई थी। उन्होंने नापिये यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और प्रबंधन में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लगातार अपने राजनीतिक करियर में प्रगति की। वे सांसद से मंत्री बनी और अंततः डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद तक पहुंची। अरियाना वामाही का जन्म शागुसियन माता पिता के घर हुआ था और उनका बचपन डकर्स फ्लैट में बीता था। इस सप्ताह मूडीज की प्रकाशित एक प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉरिशस ने बजट सुधार के क्षेत्र में अपने पहले ठोस प्रगति दर्ज की है। रिपोर्ट के अनुसार बजट घाटा पिछले वर्ष के 9.3% से घटकर फरवरी 2026 तक 5.5% हो गया, जो वित्तीय स्थिति में सुधार का संकेत है। हालांकि एजेंसी ने यह भी चेतावनी दी कि भू राजनीतिक तनाव और शागुस डील से जुड़ी स्थिति वित्तीय वर्ष के अंत तक बजट घाटे को प्रभावित कर सकती है।
15: मूडीज की टिप्पणियां जुलाई 2025 से फरवरी 2026 की अवधि से संबंधित हैं। सोमवार को प्रकाशित इस प्रारंभिक रिपोर्ट में रेटिंग एजेंसी ने शागुस मुद्दे में आई रुकावट और महंगाई के जोखिमों के बावजूद वित्तीय स्थिति के सुदृढ़ होने का उल्लेख किया। पिछले फरवरी तक बजट घाटा 5.5% तक घट गया, जो जुलाई 2025 में 9.3% था।
16: Déficit, ligne diminuée.
15: डेफिसिट 9.3% से 5.5% हो गया है, सुधार आया है। भू राजनीतिक स्तर, शागुस आदि को ध्यान में रख के मूडीज का अनुमान है कि ये 6.5% तक बढ़ सकता है। इसी क्रम में मूडीज ने यह भी उल्लेख किया कि मॉरिशस ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के डेटा प्रसार के विशेष मानकों को अपनाया है, जिससे देश की पारदर्शिता में सुधार हुआ है। राजकोष 7.8% से बढ़ा है। इनकम टैक्स के 15.8% तक बढ़ जाने के कारण ऐसा हो सका। सरकारी खर्च 3.9% से घटा है। मॉरिशस के बजट रिपोर्ट में सुधार आया है। ध्यान देने योग्य है कि देश की रेटिंग फिलहाल BAA-free है, एक नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ।
3: प्रधानमंत्री ऑसेनल गवर्नमेंट स्कूल ने अपने 104 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने राष्ट्रपिता शिव सागर राम गुलाम की उस दूरदर्शिता को याद किया, जिसके तहत मुफ्त शिक्षा की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री ने आगे युवाओं के लिए नागरिक शिक्षा पर केंद्रित निस कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की भी बात कही। विपक्ष नेता जूली जोंगो ने आज एक प्रेस से मुलाकात के दौरान अपने 3 प्राइवेट नोटिस क्वेश्चंस पर फिर से चर्चा की। इनमें मजदूर दिवस के अवसर पर आयोजित कंसर्ट, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन द्वारा कच्चे तेल के आयात और बिजली बिल में वृद्धि जैसे मुद्दे शामिल थे। जो लेशोंगो ने इन मामलों में अनियमितताओं का आरोप लगाया, हालांकि इन आरोपों को वाणिज्य मंत्री ने खारिज कर दिया। कैनाबिस पर नाडेक के टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की बैठक आज काठरबोन के गोल्डक्रस होटल में लगाई गई। बैठक में NGO, सरकारी प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल रहे। बढ़ती सिंथेटिक ड्रग्स के बीच मौजूदा नीतियों पर पुनर्विचार की जरूरत पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य, अपराध, अर्थव्यवस्था और औद्योगिक संभावनाओं पर विचार साझा किया। विदेश स्तर पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया जारी है। एक तरफ बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी अपनी हार को नहीं पचा पा रही हैं, दूसरी तरफ टीएमसी सांसद सौगत रई ने

0: उपार्थी की हार को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि उपार्थी को अपनी हार पर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद राज्य की राजनीति एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच गई है। लगभग 15 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है। भारत के राजनीतिक परिदृश्य में आए इस बड़े बदलाव के बाद अब सबकी नज़र नए मुख्यमंत्री के नाम पर टिकी है। पार्टी नेतृत्व ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। अमित शाह कोलकाता में हैं, जहां वे नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों के साथ अहम बैठकें लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी बैठक में विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा हो सकती है, जिसके बाद राज्यपाल को सरकार गठन का दावा पेश किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में सुवेंदु अधिकारी का नाम मुख्यमंत्री पद की में सबसे आगे है। दूसरी ओर मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वे लोकभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। उनके इस रुख ने राजनीतिक माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। इसी बीच चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने राज्यपाल को 293 विधानसभा सीटों के आधिकारिक परिणामों की गैजेट नोटिफिकेशन सौंप दी है। इसके साथ ही नई सरकार के गठन की संवैधानिक प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। संभावना जताई जा रही है कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके तुरंत बाद नई सरकार शपथ ले सकती है। वही असम में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखी है। असम में सरकार गठन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत शांत मानी जा रही है और संभावना है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण इसी सप्ताह के भीतर हो सकता है।
0: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ होर्मुज स्ट्रेट में अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल रोक दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका होर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही और नाकाबंदी कर रहा था। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में प्रगति और पाकिस्तान समेत कई देशों के अनुरोध के बाद ये फैसला लिया गया।
1: ईरान के संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा की है। यह अभियान व्यावसायिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए शुरू किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान समेत कई देशों के अनुरोध पर और ईरान के साथ समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होने के बाद ये फैसला लिया गया है। हालांकि अमेरिकी नाकाबंदी अभी भी जारी रहेगी। इस कदम को संभावित कूटनीतिक समाधान के दिशा में अहम संकेत माना जा रहा है, जबकि ईरानी मीडिया इसे अमेरिका की पीछे हटने की रणनीति बता रहा है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा कि ईरान के खिलाफ चलाया गया अमेरिकी सैन्य अभियान अब समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका का मुख्य ध्यान वैश्विक समुद्री व्यापार और तेल आपूर्ति की सुरक्षा पर है। रूबियो के अनुसार ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नियंत्रित करने की कोशिश को सामान्य नहीं माना जा सकता। उन्होंने चीन से भी अपील की कि वो तेहरान को समझाए कि समुद्री मार्गों में तनाव बढ़ाने से ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अलग थलग पड़ जाएगा। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची इस समय बीजिंग में हैं, जहां वे चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली आमने सामने मुलाकात है। चर्चा के केंद्र में क्षेत्रीय तनाव, अमेरिका ईरान टकराव और अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं। चीन ईरान का करीबी साझेदार है और उसके तेल का सबसे बड़ा खरीदार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा प्रस्तावित है, जहाँ उनकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है। मध्यपुर के संकट को लेकर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कई देशों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव कम करने और समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और तत्काल कूटनीतिक समाधान निकालने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में संघर्ष विराम को बनाए रखने और क्षेत्रीय अस्थिरता को रोकने पर जोर दिया जा रहा है। युद्ध के बीच खाड़ी देशों में भी कूटनीतिक हलचल ज्यादा बढ़ गई है। यूएई समेत कई अरब देशों ने ईरान पर संभावित मिसाइल हमलों और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात को लेकर बातचीत तेज कर दी है। खाड़ी देशों को डर है कि यदि तनाव दोबारा बढ़ता है तो इसका असर सीधे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता पर पड़ेगा। क्षेत्रीय देशों की कोशिश है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी रहे, ताकि बड़े सैन्य टकराव से बचा जा सके। उधर लेबानन और इसराइल के बीच तनाव भी कम नहीं हुआ। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबानन में

0: एक रॉकेट लॉन्चर को निशाना बनाने का दावा किया, जबकि हमलों में कई लोगों के घायल होने की खबर है। दोनों देशों के बीच सीमा क्षेत्र में लगातार तनाव बना हुआ है। हालांकि आने वाले दिनों में इजरायली और लेबनानी अधिकारियों के बीच बातचीत प्रस्तावित है, जिससे हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है।
1: अमेरिका के ओहायो राज्य में गवर्नर चुनाव के लिए भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन जीत लिया है। अब उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार एमी एक्टन से होगा, जो राज्य की कोविड काल की हेल्थ डायरेक्टर रह चुकी हैं। और कनारी आइलैंड्स के राष्ट्रपति फर्नांडो क्लाविजो ने स्पेन सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें हंटा वायरस संक्रमण से प्रभावित डच जहाज एमवी होंडियस को द्वीपों में रुकने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने उंडा सेरो को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि वो इस जहाज को कनवरीज में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते और ये निर्णय किसी तकनीकी आधार पर नहीं लिया गया तथा पर्याप्त जानकारी भी नहीं दी गई।
2: क्रूज की शुरुआत से अभी तक एक डच दंपति और एक जर्मन महिला इस वायरस के कारण मारी गई। जहाज को काबवे के तट के पास रोका गया था, जहां से 3 संदिग्ध मामलों की इवैक्यूएशन के बाद इसे कनारी द्वीपों की ओर रवाना होना है। इस जहाज पर 88 यात्री और 59 क्रू सदस्य सवार हैं। मंगलवार शाम को मेडिकल सुरक्षा पोशाक पहने लोग एमवी ओंडियस के पास पहुंचे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक एम्बुलेंस बोट ने 3 संदिग्ध मामलों को प्राया बंदरगाह तक पहुँचाया, जहां से उन्हें एम्बुलेंस द्वारा हवाई अड्डे ले जाया गया ताकि उन्हें आगे स्थानांतरित किया जा सके। इसके बाद एमवी ओंडियस को कनारी द्वीपों की ओर रवाना होना है, जहां वो 3 से 4 दिनों में पहुंचेगा। ये जानकारी मंगलवार देर रात स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। मंत्रालय ने एक बयान में ये भी कहा कि आगमन का बंदरगाह अभी तक तय नहीं किया गया है। WHO के अनुसार वायरस की पहचान के लिए दक्षिण अफ्रीका में सीक्वेंसिंग प्रक्रिया जारी है। फिलहाल जो संभावना जताई जा रही है वो एंडिस वायरस की है। ये एकमात्र ज्ञात एंटावायरस है जिसके लिए इंसानों के बीच संपर्क से संक्रमण की संभावना पर अध्ययन किया गया है।
1: मौसम की रिपोर्ट। हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि आज रात के दौरान आसमान में बादल घिरे रहेंगे और रह रह कर बारिश हो सकती है, खासकर ऊंचाइयों पर। कल मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। कल सूर्योदय 6:28 पर, सूर्यास्त होगा 6:45।

6:22 हो चुके हैं। ये बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है शिव के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ ही समय बाद शोक समाचार। नंबर 49 फ्रांस दे गाल रोजहिल में 83 साल की 83-year-old बीबी मरियम अम्बुराली जो आईसू के नाम से जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज रात 9 बजे इनके बेटे तौफीक अली फतेली के मकान नंबर 49 फ्रांस दे गाल रोजहिल से निकाल कर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9 PM। जगनारोड रिश्मा फ्लाक में 83 साल की 83-year-old श्रीमती फुलवंती दुर्गा पैदाशी नाम सुकन जो फुलवंती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं कल दिन के 11 बजे इनके बेटे आनंद दुर्गा के मकान जगाना रोड रिश्मा फ्लाक से उठाकर दाह संस्कार के लिए बोशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। बारामिया रोड कालबास में 76 साल के 76-year-old श्री धनीलाल घनश्याम जो सुरेश से जानी जाती थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 बजे इनके मकान बादामी गली कालबास से उठाकर दाह संस्कार के लिए वामाशाओं की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 PM। आवेनी पालमिये तेरासों पॉइंट साबल में 67 साल की 67-year-old कुमारी शास्त्री कुपुसामी जो पामेला से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे इनके श्री शांदिरन परासुरामन के मकान आवेनी पालमिये तेरासों पॉइंट साबल से उठाकर दाह संस्कार के लिए शिबेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 PM। गुटवायाल प्लेन दे रोश में 55 साल के 55-year-old श्री राजकुमार रामेसर जो दीपक से जाने जाते थे और पहले NIU विभाग में काम करते थे, पूर्व चीफ पुलिस इंस्पेक्टर थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10 बजे इनकी पत्नी श्रीमती सुलक्षणा रामेसर के मकान गोटवायाल प्लेन दे रोश से उठाकर दाह संस्कार के लिए प्लेन दे रोश की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। रोश रोड पों ब्लॉ फ्लाक में 56 साल की 56-year-old श्री देवरानी सी गुलाम जो सुनीता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 बजे इनकी बेटी श्रीमती अश्वीरा सिंह के मकान रोश रोड पों ब्लॉ फ्लाक से उठाकर दाह संस्कार के लिए कौदे मास्क की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 PM। रल रोड मोटाई ओरी मोका में 78 साल के 78-year-old श्री पूरन दुबा जो मोटाई ओरी गवर्नमेंट स्कूल में पूर्व कैटेकर थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10:30 बजे इनके मकान रल रोड मोटाई ओरी मोका से उठाकर दाह संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM। स्कूल लेन लावेनिया सेंट पियर में 47 साल के 47-year-old श्री खेमराज पेटोब जो विशाल से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10 बजे इनकी माँ ललिता पेटोब के मकान स्कूल लेन लावेनिया सेंट पियर से उठाकर दाह संस्कार के लिए
circonstance Saint-Pierre qui smashan bhumini jai jaegi. Cremation tomorrow at 10 a.m. Aur Nehru Lane Lavanture mein 78 saal ki 78-year-old Shrimati Vedwanti Chaturdhari paidaishi naam bandhu jo Chandrauti se jaani jaati thi ki mrityu ho gayi hain arthi kal subah 9 baje inke makan Nehru Lane Lavanture se uthakar dah sanskar ke liye Medin Kaudimaske ki smashan bhumi le jaayi jayegi. Cremation tomorrow at 9 a.m. Shok mein dube hue in sabhi parivaron ke prati hamari gehri sahanubhuti hain.

लगता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी, यानी कि वेनसडे 6 मई 2024 सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक और दोपहर के 4 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रिविया डिजोंगी और आसपास के इलाकों में और रूट रॉयल पे प्रूडम लाबाराक रोड रेलवे रोड बानसिंग रोड सोइफू रोड गोपाल लेन मटाबादल रोड और SSR रोड में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और थर्सडे 7 मई 2024 सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक विलबाग में और पेचिट जिली और ग्रान रोजाली और आसपास के इलाकों में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और CBI अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
2: सभी श्रोतागण को अनीता का सप्रेम नमन व भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम में आप लोगों का अभिवादन है, जो इस समय रेडियो मॉरिशस द्वारा प्रसारित हो रहा है। भक्तों, धर्म यानी कि कर्तव्य अथवा सदाचार को ना जानकर मनुष्य दुखी होता है, अर्थात वह बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। मनुष्य जन्म की सार्थकता केवल धर्म यानी कर्तव्य सदाचार के पालन में है। इसी विचार के साथ आइए कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

भक्तों, एक सुंदर श्लोक इस प्रकार है, निश्चित्वा यह प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः अवंद्य कालो वश्यात्मा सर्वे पंडित उच्यते। अर्थात जिसके प्रयास एक दृढ़ प्रतिबद्धता से शुरू होते हैं, जो कार्य पूर्ण होने तक अधिक आराम नहीं करते हैं, जो समय बर्बाद नहीं करते हैं और जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, वह बुद्धिमान कहलाता है।

प्रियजन, कहा गया है कि हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणैः किं प्रयोजनम। कहने का तात्पर्य यह है कि हाथ का आभूषण दान है, गले का आभूषण सत्य है, कान की शोभा शास्त्र सुनने से है, अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है।

भक्तगण, आत्मसंयम एक सर्वश्रेष्ठ गुण है। सभी लोगों को आत्मसंयम का पालन करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि सर्वम परवशम दुखम सर्वात्मवशम सुखम एतद् विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखयो हो। अभिप्राय यह है कि सब कुछ दूसरों के वश में होना दुख है और सब कुछ अपने वश में अपने नियंत्रण में होना सुख है। संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण है।

श्रोताओं, जिस भांति वस्त्रों को काटने वाला चूहा पेट भरने के लिए कपड़े नहीं काटता, उसी भांति दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव मात्र दूसरों का कार्य बिगाड़ना होता है। अतः दुष्ट व्यक्तियों का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। तो इन्हीं विचारों के साथ हम कार्यक्रम को विराम देते हैं। साथ देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. تمام तारीफें अल्लाह ताला के लिए है, हम उसकी तारीफ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और उसी से मगफरत तलब करते हैं। हम अपने नफ्स के शर से और बुरे आमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और वो जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रेडियो मॉरिशस की उर्दू नशरियात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान अबीनाज जान अली। महफिल शब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। रमा साहब तकनीकी मदद फराहम कर रहे हैं। आज की रात अल्लाह पाक को याद करने जा रहे हैं। हस्ब मामूल कुरान मजीद की तिलावत से इस बज़्म का आगाज़ कर रहे हैं। ये वो अजीम किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, ये परहेजगारों के लिए हिदायत है।
3: बिस्...

मोमिन की हड्डियों से गोश्त तो उतर सकता है, लेकिन हमारे दिलों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ख़त्म नहीं हो सकती। एक दूसरे से नाराज़ मत हुआ करें, क्योंकि मैं और आप उनके उम्मती हैं जो दुश्मनों से भी मोहब्बत किया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई से मुस्कुराकर मिलने और अच्छी बातों का हुक्म देने और बुरे काम से रोकने का सवाब सदक़े के बराबर है।

सब कुछ खो देने के बाद भी अल्लाह पर यकीन रखना, उसे ही ईमान कहते हैं। सूरह अर्राद उर्दू तर्जुमा। जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है और हमारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन न चाहे। सामिने कराम, महफिल इशा प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ। तकनीकी मदद के लिए रामा साहब का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे। अपना ख्याल रखें। शब बख़ैर। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

0: संगतिया लोग घड़ी में डाला अभी वक्त रात के ठीक 9 बजे बाद तू सुना तो एमबीसी रेडियो मॉरिशस और एमबीसी रेडियो मनोरंजन
1: a week 24 hours a day live this is Radio Marxist.

सब संगजारों के अजय प्रताप सिंह सितालू की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो मन पसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन। आज 19 किलोहर्ट्ज पर रेडियो मॉरिशस और 94.98 MHz पर रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस 819 किलोहर्ट्ज पर। आज है बुधवार की रात, बुधवार 6 मई 2026। अभी से लेके रात के 11 बजे भोजपुरी तड़का नाचब स गावब स खूब मस्ती करब स कमरवा डोलावब स नाचो गाओ झूमो डांस सिंग डांस एंड एंजॉय खूब नाचब स तोरा नचावब जा भी भोजपुरी के गीतवन पर का संदे का तो मैं संक 408-0808 पर सब बजे हमने की टेलीफोन करके भोजपुरी गीत मांगे और ढेर मना सरप्राइज भी भाई प्रोग्राम में। आहा अब गमाटा शुरू होकर बात चल शुरू करी जा कुनाल हिरी लाल की गावल गीत एगो जोली छोकरी से प्यार करी रहा है सब कोई खुशी रहा जोली जोली छोकरी से प्यार करे के ए हे चल है गीत से शुरू कर जा आज के भोजपुरी तरह का प्रोग्राम के रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। मन करता नाचे के गावे के नाचे हमने के संगे एगो जोली छोकरी से प्यार करीला हे

0: भोजपुरी तड़का,
1: भोजपुरी तड़का,
2: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खाती
1: गमन जलसा हंगामा।
3: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। गमन धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
4: और पहला गीत चल सब रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन के श्रोता लोग खातिर संग चाल गुजरात। सर्दी के मौसम आवा तक आएगी, फजर के दिग्बत 6 बजे अंधार कर ले रहेगा और सूरज देर से उगेला और शाम के सूरज देर से ढलीला। एक मतलब है कि हमने सर्दी के मौसम में प्रवेश करत है जा। ऑफिशियली कैंस में से 15 मई से हमने सर्दी के मौसम में प्रवेश कर सर। अपन त्रिको जैकेट ब्लू सुसेट लिगों सब किन के रख दिया, काहे कि बुझाता ये ठंडा के मौसम जो है काफ़ी जबरदस्त रही। रात के 9:08 अगर तो हर जन्मदिन मत जन्मदिन मुबारक, शादी की सालगिरह, शादी की सालगिरह मुबारक। और थोड़ा मन करता कोई खातिर गीत मांगे के तब शक हमने के टेलीफोन करा कल जगो दे वित जगो वित सैंक कल जगो दे वित जगो वित सैंक पर। और अपन पसंदा भोजपुरी गीत सुनो जागला गीत जोश में आके आगे पीछे राजकुमार चिंतामणि गीत आगे इलेवन है गीत चलावती सतुब SSS कॉलेज के ग्रेड 13 रूज के सब स्टूडेंट्स लोग के नाम ओकर में दिलान बा और दिलान अपन संगतिया लोग के नाम नहीं भेजला। दिलान कक्षा में बा, कक्षा में साथ में अच्छा तो है ग्रुपवा में बोलिए लोग के बन नाम भेजे के आंजेलो बा, समीर बा, शिवम बा, तेजस बा, नतराज बा और दिलान और सब लोग के संगत या लोग हमने के सुना था SSS कॉलेज दक्षिण में बा तैगी तोहर लोग खतेर। और साथ में है गीत चलाते इस रेहाना जी के नाम आप रेहान फेनिक्स बहुत प्यार के साथ और सब परिवार खतेर। और जितना कोई भी रात के हमने के सुनाता है गीत दलों के नाम भी और जितना हमने के देश में स्पोर्ट्स मैन स्पोर्ट्स वुमेन लोग बा जो एथलीट लोग बा जितना कोई स्पोर्ट्स ही फॉर्मेंस हर प्रकार के फॉर्म में भाग ले वालन सर जैसे जावलो बा डिस्कस बा रेस बा तो सब एथलीट लोग के नाम सब स्पोर्ट्स चीफ लोग के नाम है गीत जोश में आके आगे पीछे।

0: और मॉरिशस जो है पिछला जो डिजील में नंबर वन पे आ रहा है को दो में रहा ही तो सब कोई जाने रहा और जितना लिस्टर्स हैं कि सब टापू लगा रहे से शैल मालदीव सगाली का ये सब भाग लग पर मॉरिशस सब इम्प्रूवमेंट नंबर एक करने रहा। रात के 9:15 संगत आलोक हमने रोज के फजर के राज्यों में सुना तीस महाराणा प्रताप अब ढेर कुछ सोचता कि महाराणा प्रताप के है तो महाराणा प्रताप जो है इतिहास के सबसे वीर योद्धा रलन और जन्म हो रहा 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ फोर्ट में मेवर जिके नाम बा राजस्थान बोईला सा और महाराणा प्रताप के पिता के नाम रहा उदय सिंह और माँ के नाम रहा जयवंताबाई। बचपन से प्रताप बहादुर शक्तिशाली और देशभक्त रलन तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण रलन और उस समय अकबर भारत के बड़े शासक रहल। अकबर चाहतल कि महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार कर ले लेकिन प्रताप कभी अपन आज़ादी से समझौता नहीं करलक। इस वजह से उनके बीच युद्ध होल। सबसे प्रसिद्ध युद्ध रहल 1576 में जिसे बैटल ऑफ हल्दी घाट बोलल जला। युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहादुरी से मुगल सेना के सामना करलक और घोड़ा चेतक भी बहुत वफादार और वीर रहल और आज भी हमने चेतक के याद करी रहा सर। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मनलक, वो जंगल और पहाड़ में रह के संघर्ष करलक और अपन प्रजा की रक्षा करलन और धीरे धीरे महाराणा प्रताप अपन अधिकांश राज्य के वापस जीत लेलन। ओकरा मेवर से फिर से मजबूत बनेलक और अपन राजधानी चवन में स्थापित करलक। महाराणा प्रताप की मृत्यु हो रहा 19 जनवरी 1597 के। वो अपन जीवन के अंतिम समय तक अपन मातृभूमि के लिए लड़ते रहल। तो महाराणा प्रताप की विशेषता यह है कि वो अतुलनीय साहस और वीरता के सिंबल है। देशभक्त और स्वाभिमान कभी हार नहीं मनलक और प्रजा के प्रति प्रेम दिखाईलक। तो खातिर आजकल MBC रेडियो पर रोज के फजर के 6:20 पर एगो वार्ता चला महाराणा प्रताप पर। एगो योद्धा को गेरिये रहल घोड़ा को घोड़ा के नाम रहल चेतक। अब कहूँ भी जेबे कोई थोड़ा से पूछी कि हाँ महाराणा प्रताप तो सकबा बोली कि महाराणा प्रताप एगो योद्धा रहल। और ऐसे में सुनब जागला गीत सेल्फी और गीत गैले हवन विनेश गणपत और गीत चलावत ऐसा खासम खास परी की ओर से कुमार रानी के लिए बहुत बहुत प्यार के साथ। और ये गीत चाहते अश्विनी जी के नाम आप रहे लंत योली बहुत प्यार के साथ। फिर अनिता जी हवन अफ्रीकन फ्लैग से, अनिता लाल जी मौदालवे से, फिर चित्रा जी मौदालवे से कर घरोला कस परिवार के नाम। और है गीत हम चला सा टीना की ओर से कवि माधव रीना और माला के लिए। और जितना कोई भी रात के हमने सुना था गीत दोनों के नाम भी ले ले ले ले सेल्फी ले ले रे मन करता नाचे के कमरवा डुलावे के नाचा हो कावा हो एगो सेल्फी ले ला हे हे
1: झुमा गावा भौज

रात की 9:22 हुआ था। तू उनके साथ होते हो रेडियो पर, उनके साथ देते रहे एमबीसी रेडियो, रेडियो मॉरिशस, रेडियो मनोरंजन पर। संगत लोग मधु यानी कि जुमियल हनी एक प्रयोग हमने करी रहा हमने की दैनिक जीवन में और एक ढेर मना पौष्टिक तत्व बा मधु में कार्बोहाइड्रेट्स बा शर्करा बा लगभग 75-80% कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं फ्रुक्टोज बा यानी कि सबसे अधिक मात्रा में और ग्लूकोज यानी कि तुरंत एनर्जी देवेला सुक्रोज एक में थोड़ी सन बा ये शरीर के ऊर्जा देवेला एनर्जी देवेला। और एक में पानी भी बा और जिन लोगन की डायबिटीज बा और सक्यंस हनी के प्रयोग करे पर वो सीमित मात्रा में। एक में वाइटामिन भी बा वाइटामिन B1 वाइटामिन B2 वाइटामिन B3 वाइटामिन B5 वाइटामिन B6 और वाइटामिन C ये शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम के अच्छा रखेला। एक में मिनरल्स भी बा जैसे कि कैल्शियम आयन मैग्नीशियम पोटासियम और जिंक और एक में एंजाइम भी बा और मधु मक्खी द्वारा मिलाए गए एंजाइम और एक दवाई के रूप में इस्तेमाल करी रस और एक से तरकारी भी बनेला गातो भी बनेला। हाँ और मधु के फायदा यह कि हमने की तुरंत ही एनर्जी देवेला खांसी और गला के दर्द के दूर बचावेला दूर हमने की खांसी और गला के दर्द से दूर बचावेला पाचन सुधार डाइजेशन के हेल्प करेला। तो अच्छा हमने के लाभों खातिर बहुत अच्छा जुमियल और रोज अगर इस्तेमाल कर ब तो तह लापो एकदम जोड़ी रही चिकन चाकन रब तो ज़रूर हनी ए जुमियल के प्रयोग करिए मधु के मद बैला से और मद से पूजा भी होला है। जब शिव अभिषेक करी रहा सको भगवान के तब मद दूध भी सेवी कर सकता है। जो हनी है जो नेचुरल हनी है एक ही सकबा सेवी करे। अभी कहते वो गीत सुनम जा काम करुआ रे काम करुआ बमल विमल और बीबा चिंटा मनी गए वन गीत गीत लता जी के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ। लता हमने की सुनते वन स्विट्जरलैंड से रम हाबी वन स्विट्जरलैंंड से अजय और पूनम चिंताराम ऑस्ट्रेलिया से हवन दीपा दीपा दुखित हवन कनाडा से ओकर पति केविन ओकर बेटा और सब दुखित परिवार के नाम जो हमने कनाडा से सुना था काम करवा रे काम करवा।

रात के नौ बज के आधा हुआ था और तू सुना तो रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और प्रोग्राम हो छोड़ी तेर का चले था रात की 11 बजे रिसंग चारों का चेर को फिल्म रिलीज हो बजे का नाम है भूत बंगला। ये को नया बॉलीवुड हॉरर कॉमेडी फिल्म है और ये फिल्म प्रिया दर्शन के बनावल है और कर में नजर अलबा मुख्य भूमिका अक्षय कुमार और फिल्म की कहानी एगो व्यक्ति की है जो नाचार ये जन इर्द गिर्द घूमते रहेला और आर्थिक परेशानी से जूझेला। अचानक के अपन दादा के वो कहानी हवेली जो है विरासत में मिल रहा तो ये सोचला कि हवेली में अपन बहन के शादी करियन जा और बेशक जैसे जैसे शादी की तैयारी होल तो बंगला में अजीब अजीब डरावनी घटना घटे लगल। गाँव वाले बोला था कि वो बंगला शापी था। अजीब आवाज़ डरावनी परछाई सब लोग कतल। अर्जुन के पता लग गल कि ये हवेली में एक भयानक अतीत छुपल बा। आखिर में ये रहस्य के सुलझाए खातिर ये फिल्म के मुख्य रोमांच है। फिल्म में डर के साथ साथ ज़बरदस्त कॉमेडी भी बा जैसे भूल भुलैया जैसे स्टंट्स भी बा और मुख्य कलाकार फिल्म के है अक्षय कुमार मुख्य भूमिका टब्बू महत्वपूर्ण किरदार निभावन पारिश रावल कॉमेडी रोल राजपाल यादव हास्य भूमिका वामिका गब्बी हीरोइन मिथिला पलकर बहन का रोल जिशु संगुप्ता स्पॉटिंग रोल और आसरानी वरिष्ठ कॉमिक किरदार। ये फिल्म हॉरर कॉमेडी के मिलन है मिश्रण बैकर में अक्षय कुमार प्रियदर्शन की 14-16 साल के बाद वापसी। फिल्म की शूटिंग भारत और विदेश जैसे लंदन जयपुर में होलबा और इसी परिवार के साथ तू सकबा देखे तब भूलिए नहीं है। फिल्म जो है कॉमेडी और हॉरर से भरपूर मूवी जिसका नाम है भूत बंगला और अभी लाइन पे देख सक कौन संगत या बात शांति हवन त्यागोर से तो शांति गीत तोहर खातिर तो सब परिवार खातिर मिठाई लाडी को गीता का झादर की आवाज़ में जिता कोई अभी इनकी रात के सुना था नाइट शिफ्ट में हवन सा कॉल सेंटर में काम करते हुए गार्डी के काम लिजिन में या कहूँ भी जैसे अस्पताल में मेट्रो स्टेशन में और पुलिस स्टेशन में जहाँ से भी तू काम करते हमने की साथ देते हुआ तो गीत तो लो कि ना मिठाई लादी को

संगत कर जान की पानी पिया छान के अच्छा बोला गीतों में कि छा जाने की कैसे लोगन से तू संगत करते हो। संगत के प्रभाव पड़ेरा, अच्छा संगत कर बता अच्छा प्रभाव पड़ेरा, बुरा संगत कर बता बुरा प्रभाव पड़ेरा। और बेशक आज रिवियरिजों की स्थित कॉलेज में रक्तदान रल ब्लड डोनेशन रल, जितना कोई वहाँ अगर अपन खून देवे अपन रक्तदान करे तो बहुत बहुत धन्यवाद कॉलेज की ओर से। जितना कोई ग्रहल अपन खून दे, क्या है कि हर एक बूंद खून बहुत ज़रूरी है। अक्सर जब कि देश में कबू दुर्घटना हो जाला, एक्सीडेंट हो जाला, तो खून ढेर बह जाला, या जब नारी के जब लड़का हो रहा था ढेर खून बह जाला, तो हमेशा चला पैन जिसो अवेलेबल रहे कि हम के अस्पताल क्लिनिक में। और है जो रक्त रक्तदान है एगो नोबल वर्क है, एगो नोबल काम है। आई रक्तदान केवल इंसान से अकेला करे और कोनो प्राणी नहीं। तो अपन एक बूंद खून तो कोई की दीवत भगवान थोड़ा ढेर आशीर्वाद देता। जितना कोई कर रहा अपन रक्त के दान करे कबीरिजाम की स्थित कॉलेज में, सब कोई की बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम के मौका मिले वहाँ जाके रक्तदान करे के, और बेशक बहुत खुशी हुई थी कि जितना कोई आ रहा वहाँ पर सब कोई अपन अपन खून दे जा कोई की जान बचाए खातिर। तो कबीरिजाम की स्थित कॉलेज सब कोई की धन्यवाद बोला था। और एक गीत सब श्रोता लोग जो कर वहाँ पर रक्तदान करे लोग खातिर एक गीत चला रक्तदान बसंत सुपोल के आवाज़ में।

भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमर, धमाल और मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC

रात के 10:03 होता तू सुना तो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन भोजपुर का प्रोग्राम अजय प्रताप सिंह के साथ संगतिया लोग ढेर कोई पीतल के चीज कुसा फेने की तो ढेर कोई सोना के गहना शुभ माना जरा लक्ष्मी की रूप रहेला सोना के अंगूठी सोना के कंगन सोना के हार सोना के काब सोना के कोनो भी चीज हो तो संगे तो उस शुभ लाभ माना जाला और आर्थिक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रूप से भी सोना के बहुत महत्व बा। सोना एगो कीमती वस्तु है और सदियों से लोग इस्तेमाल कर लगबा राजा महाराजा लोग इस्तेमाल कर बा और आम इंसान भी सोना के उपयोग करेला और जन सोना है बहुत शुभ मानल जाला और जब पूजा पाठ होला तो सोना के उपयोग भी होला और सोना जो हम की सौंदर्य के और निखारेला और जब एगो व्यक्ति सोना के आभूषण पहने तो बड़ी जोड़ी लौकेला और सब कोई जो है कॉम्प्लीमेंट करेला ओके तारीफ करेला तो सोना केवल एगो धातु नहीं है पर ओके शुभ भी मानल जाला। अगर तोहर घर में सोना बा या सोना की गहना तू पहने रहता वो अच्छा बा। अब नहीं बोलते कि सोना के गहना पहन के सगरो जाए कि आजकल चोर चक्का सगरो घूमेला पर एगो सोना के अंगूठी या सोना के हार या सोना के कंगन या सोना के पायल अगर तो लोग इस्तेमाल करेला तो हर तोहर तोहर अनुसार है दिल के कैपेसिटी से जितना सकब सोना के अगर उपयोग करे जैसे कि बोली सोना के हार सोना के कंगन सोना के अंगूठी तो कोनो चीज अगर सोना के हो तो संगे तो शुभ मानल जाला और जहाँ जेब सोना जो रहेला तो हमनी के सब द्वारी खोलेला। और धर्म ग्रंथ में जब पर्वत है सोना के महत्व जो है राजा महाराजा के ज़माने से राजा दशरथ के ज़माना से कैसे जोड़ी से राम सीता लक्ष्मण जोड़ी से आभूषण पहना तलन से और मुकुट सोना के और इतना जोड़ी लौक तलन से तई सोना के प्रयोग सक बचा करे मना नहीं है पर हिसाब से। और अगला गीत जो है वो एगो बहुत ही प्यारा गीत है निर्मला फौदार गए उन गीतवा कोनो दिन दाल खा के कोनो दिन कच्चू खा और गीत चलावत इस अच्छी परिवार के नाम रिस्कारी रहे रंस प्रीतम किदनन के साथ वर्तन गीत और खातिर आशा बिनी है गीत और खातिर थोड़ा सा परिवार खातिर है गीत चलाते इस सतानंद जी के नाम बहुत प्यार के साथ जो जुड़ल बा और विद्या के साथ अथवन थोबिश से हेलो विद्या महाराणा प्रताप ने थोबिश के सफर को परिवार के लिए और थयोले के सब करकटिया परिवार के नाम और जीराखंड परिवार लोग जितना कोई हमने की सुना था किशन गुड़िया प्रिया जुपस से और उदय दनी राम प्रिया जुपस से वन राज मन्ना को सब मन्ना परिवार जिमी दुखिया सुदेश जसवा कुमार राजकुमारी और जितना संगतिया लोग अभी रात के हमने की सुना था रेडियो रेडियो मनोरंजन पर और इंदिरा चिंताराम और बेटा चंदन बहुप्रिया बेटा जय बहुपूनम सब चिंताराम परिवार के नाम कोनो दिन दाल खा के है गीतवा सबको के नाम

0: भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमर धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
1: श्रोतिया लोग, हल्दी के जो इन प्रयोग है तो ओकर बहुत महत्व हमनी के दैनिक जीवन में। हल्दी साफ हो वे जे के बोली जा सत, हल्दी जो है टर्मरिक है और भारतीय जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे उ स्वास्थ्य के लिए खाना व्यंजन या परंपरा के लेके और के वैज्ञानिक रूप में क्यूरक्यूमा बोली जा सत। हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व है जो बहुत लाभकारी है और सूजन कम करेगा, इन्फ्लामेशन के दूर करेगा, शरीर के सूजन और दर्द के कम करेगा और उनके शरीर के इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा बढ़ावेला, रोगों से हमनी के दूर रखेला। अगर में ऑक्सीडेंट गुनबा, घाव और चोट अगर लगर रही हल्दी पीस के लगेबा तो घाव चोट ठीक हो जाला। गैस उपच जैसी समस्या की राहत देवेला, त्वचा के लिए लाभदायक है और चमक और हल्दी के इस्तेमाल, हल्दी के पेस्ट अपन शरीर के अंग में लगेबा तो तुहर शरीर बहुत सुंदर हो जाए, चमक और साफ त्वचा रही। और खाना में भी प्रयोग होला और रसोई में मसाला के तकारी पकावत हुआ तो कमें हल्दी दलबा, विंदाय पकावत हुआ तो करो में हल्दी दलाला, सब्जी दाल करी आदि में रंग और स्वाद खातिर हमनी हल्दी डाली रहा सब। और सर्दी खांसी के दूर करे खातिर हमनी हल्दी वाला दूध पी रहा सब। और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बा, हिंदू परंपरा में हल्दी के शुभ मानल जाला। शादी में हल्दी विधि होला, दुल्हा दुल्हन पर हल्दी

लगावल जला ताकि वो लोग के जीवन और लोग के शरीर मन सब पवित्र रही और लोग अच्छा से रहियन सब। पूजा और त्यौहार में भी हल्दी के उपयोग हो। जहाँ पर श्रृंगार की बात है, सौंदर्य की बात है, तो फर्स्ट पैक के रूप में त्वचा निखारेला, दाग धब्बा से हमने दूर रखेला और हमने बाल और त्वचा खातिर बहुत ही लाभदायक है। आयुर्वेदिक दवाई भी बनेला हल्दी से। प्राकृतिक रंग नेचुरल डाई के रूप में भी कपड़ा में इस्तेमाल हो रहा और हल्दी के जो प्रयोग है तो हर तरीके से हमने अगर इस्तेमाल कर रहा। सभी के लेकर लोग उतना नहीं जाने रहा पर हमने की काम है बताया कि हल्दी अगर तो प्रॉन्टली हुआ तो बहुत लामोहताज बहुत एक हमने की एडवांटेज है कि महत्व है। और जैसे कि बोली बीमारी से हमने बचावेला, हमने की त्वचा के सुंदर रखेला, तकारी में सब इस्तेमाल करें तो बेशक अगर हल्दी हो तो हल्दी के इस्तेमाल ज़रूर करिए जा। और जब हल्दी की बात करें से तो हो जाए अब सब्जी दादी। जी हाँ, प्रीतम कुमार दछुआ गीतवा गैले हुआ, निशांत सिंह छुबा रहे रन थ्वाबुच्ची के गीत तोहर खातिर, तोहर धर्मपत्नी, तोहर बेटी, तोहर दामाद, तोहर बेटा और सब छुबा परिवार खातिर है ये गीत। है गीत चलावत ऐसा है गीत हम चलावत ऐसा विद्याज के नाम कर घरोला अशोक खातिर और है गीत संगीता मीरंज के नाम है। गीत चलावत ऐसा संगीता मीरंज की ओर से रीता सीतालू के नाम भी बहुत बहुत प्यार के साथ। और जितना कोई कोशिश करता लाइन नाम ही रहता था गीत के नाम। शास्त्री बोरे माली जी हमने के साथ देते रहे रहें, तोहर बेटा विवेक, तोहर बेटी दिव्या और सब बनोमाली परिवार के नाम गीत चली। और है गीत चलावत ऐसा जितना कोई कोशिश करता थोड़ा लाइन नाम ही रहता था गीत के नाम सब्जी दादी।

हमने के रेडियो पर 24 घंटे म्यूजिक चलेला गीत के प्रोग्राम रहेला और थोड़ा बता दें कि संगीत एगो थेरापी है और ये थेरापी से ढेर कुछ हमने सीखीला सा और संगीत कैसन थेरापी है तो ये मानसिक तनाव के कम करेला। जब तू धीमी और शांत म्यूजिक सुनबा तो तुहर दिमाग रिलैक्स करेगा, स्ट्रेस एंग्जाइटी से टेंशन से दूर रह। और जब तू अच्छा म्यूजिक सुनाते हुआ तो वो फील गुड फैक्टर होला और हमने के मूड बेहतर बने रहा, जिससे हमने की खुशी के महसूस होला। और जब अच्छा संगीत सुनबा तो रात के सकबा अच्छी तरह से सूते तो दिमाग और मन शांत रही। और बोलिया सा कि संगीत थेरापी फॉलो करबा तो हमने दर्द से दूर रह सर। कभी कभी फिजिकल पेन होला या मेंटल पेन होना तो जब संगीत सुनबा तो ये सबसे दूर रह। और भावनाओं के व्यक्त करने के तरीका संगीत हाँ कि नहीं, कबो कबो जो इन बात हमने नहीं सकीला सब बोले तो संगीत के द्वारा सकीला सब बोले। तो संगीत थेरापी कहाँ इस्तेमाल होला, अस्पताल में मरीज लोग खातिर डॉक्टर इस्तेमाल करेगा, मरीज लोग के अच्छा करे खातिर म्यूजिक के इस्तेमाल होला। जितना कोई डिप्रेशन और स्ट्रेस से गुजरेला डॉक्टर लोग म्यूजिक के इस्तेमाल करेला वो लोग के डिप्रेशन दूर करे खातिर। और लड़का और बुजुर्ग लोग खातिर इमोशनल सपोर्ट है। और संगीत थेरापी मेडिटेशन और योगा में भी इस्तेमाल होला। और जैसे कि हम बोली कि जब तू उदास हो तो मूड नहीं अच्छा बा तो अच्छा संगीत सुनबा तो तुहर मन थोड़ा सुन बहल जाला हो कि नहीं। तो संगीत केवल एगो मनोरंजन नहीं है, ये मन और शरीर के एगो हीलिंग पावर है जो मन के शरीर के शांत रखेला, उनके मूड के अच्छा रखेला। और संगीत सुनते रहिए और तुहर मनोरंजन होते रही। तो एगो जबरदस्त संगीत अब चली झीले झीले झीले उमेश दोहू गैले वन गीतवा है। गीतवा रतन निहाल जी के नाम रहे गौबे कर पत्नी करुणा पापा विजय सब निहाल परिवार के लिए। मनीष अचामी सिंह है गीत और खातिर तुहर पत्नी तुहर तीन गो लैका तुहर माता जी और सब अचामी सिंह परिवार के नाम। और है गीत हम चिलावती सब सिति जोड़ी परिवार के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ झीले झीले झीले झीले।

0: संगठन लोग बोला सर कि ताली दोनों हाथ से बजेला, एगो हाथ से ताली नहीं बजेला। जन ताली बजायला सर दोनों हाथ से तईगो साधारण चीज बुझाला, पर एक में शारीरिक मानसिक और शारीरिक और मानसिक फायदा भी होला ताली बजाय से। पहला एतिहत कि ताली बजेब तोहर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। एक्यूप्रेशर प्रभाव, हाथों में कई नर्व्स के पॉइंट रहेला और ताली बजेब तो सब पॉइंट स्टिमुलेट होला, जिससे शरीर में अलग अलग अंगों पर सकारात्मक असर पड़ेला। रक्त संचार बेहतर होला, ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन आगे बढ़ेला और शरीर में ऊर्जा बढ़ेला। मांसपेशी सक्रिय होला, हाथ कंधा और बाजू के हल्का एक्सरसाइज होला और मानसिक और भावनात्मक लाभ, तनाव कम करेला। ताली बजेब तो फील गुड फैक्टर हार्मोन्स रिलीज होला, जिससे स्ट्रेस कम होला। ध्यान तोहर फोकस बढ़ेला और रिज्म के साथ ताली बजेब तो कंसंट्रेशन बेहतर होला, मूड अच्छा होला, खुशी और उत्साह के महसूस होला। योग और स्वास्थ्य अभ्यास में ताली के महत्व, कुछ लोग ताली बजाने को क्लैपिंग एक्सरसाइज भी बोलेलन सर। सुबह के सैर मॉर्निंग वॉक के दौरान ताली बजैया तो स्वास्थ्य एकदम अच्छा रही। लॉफ्टर थेरापी, लॉफ्टर योगा हो, हंसी योग हो, तकर में ताली बजावीला सर। और प्राणायाम और मेडिटेशन के साथ में भी ताली बजाए के जो है बोलल जाला। और हमने ताली कब बजाएला सर, जब कोई की प्रशंसा करेला सर, कोई एग्जाम में पास होल बा तब भावो फिर सासों बोला सर। समारोह स्कूल और धार्मिक कार्यक्रम में एकर उपयोग होला, जब कोनो मंत्री को बात बोललक अच्छा तरह से तमनी ताली बजाएला सर। जब रेक्टर अच्छा से अपन जिसको करक तमनी ताली बजाएला सर। जब कोई अच्छा बात बोलक तमनी ताली बजाएला सर। ताली एक एक्सरसाइज भी है, ताली बजाए के हमने के हाथ में जितना नर्व्स है वो अच्छी तरह से होला। तो ताली बजाते रहिए और अब सुनो मार ताली मार। कुणाल हिरीलाल के गीत है और देखो सभी कौन संगतिया हमने के संगे लाइन पे बा, हमने के इंतजार करा था। और हेलो हेलो, हमके समझ में नहीं आवे टेलीफोन करके टेलीफोन काट दे हुए सर। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, नमस्ते।
1: नमस्ते जी,
0: के हवा जा
1: श्रीमती।
0: श्रीमती टेलीफोन के काहे काट दे तो हो इतना सोने
1: का नहीं कटी वो
0: का जी के काट दे हुआ था। आली आली बोला बोला श्रीमती, कैसे समाचार?
1: नातिन के कल जन्मदिन
0: नालिन
1: खोते है नहीं मिला था ना।
0: हाँ हाँ ढेर कोई सुने करा था, बोला।
1: नातिन के नाम है आसना, पापा के नाम है शक्ति, मामा पूनम और उनका भाई अखिलेश।
0: चल आपसे थोड़ी खड़ी में
1: सब चंद्रमुनि परिवार की तरफ से, सब मोहेश परिवार निष्काली की तरफ से डाल दिया।
0: और थोड़ा खातिर तो सब परिवार खातिर
1: ठीक है। ठीक है,
0: ओके, बहुत धन्यवाद हमने की टेलीफोन कर ला। तो जितना कोई की जन्मदिन बा, हैप्पी बर्थडे बोला तो इसे हम जान ला सकी। कबो कबो दिन की लाली नहीं मिलेला तो रात के सुने करेला सर, तो रातों के कबो लाली नहीं मिलेला। कोई बात नहीं, अभी गीतवा चली कुणाल हिलाल के गीत मार ताली मार, और बाद हैप्पी बर्थडे बैक टू बैक दुगो गाना, एगो कुणाल हिलाल के और एगो बासंत सुपोल के। छिलक साथ सुने मार ताली मार।

इंसान के मूड हमेशा बराबर नहीं रहेला, कबो मूड अच्छा रहेला तो कबो मूड खराब हो जाए, पर मूड अब अच्छा रहेला तो जलसा खुजरा करी कर। जलसा कहे करीला सा, जलसा कहला सा जब कोई की शादी रहेला, कोई के जन्मदिन रहेला, मंगनी या कोई एग्जामे पास हो गए तो कहीं बधाई दे तो जलसा करीला सा, या कोई के घर में बाबू आलबा या कोई अपन ड्राइविंग लाइसेंस पास कर ले लग तो हमने जलसा करीला सा। और जलसा करे खातिर जेब में चेहरा पैसा, पैसा बात रोज के जलसा बा भैया, पैसा नहीं बात कौन जलसा बा। और रेडियो वर्षा रेडियो मनोरंजन में रोज की जलसा होती रहा, फजीर से लेके शान ने, शान से लेके रात ले, रात से लेके फजीर ले। अगला गीत है जलसा लालबा, किशोर खिमिया के गावल गीत। और गीत लता जी के नाम होकर घर उलाकर दुगुलई का और सब परिवार खातिर। और आशा जानू को तेज सेवन है गीत, तो नाम थोड़ा सा परिवार के नाम। और है गीत चला तो इस निमी की ओर से, निमी की ओर से प्रकाश के नाम। और है गीत प्रताप सिंह मोहंगू के नाम। आप रहेलन कौन जाब गीत और खातिर, संजय हरिचंद गीत और खातिर, तोर पत्नी संध्या बीती हुविष्का और सब हरिचंद परिवार के नाम। संजय बिहारी गीत और खातिर, तोर पत्नी सुरेखा बीता कुशल बहू बेटी रिंकू दामाद और सब बिहारी परिवार के नाम। जलसा लालबा

आज की गमच कुको जलसा लालवा, हाँ यहाँ तो जलसा ही जलसा, हम तो नाचा तो लोग के संगी संगी। और अब जरा भोजपुरी भाषा के बारे में बताया आप सब। भोजपुरी भाषा जो है ये दुनिया भर में ढेर मना देश में प्रयोग होला, केवल भारत में या मॉरिशस में नहीं पर ढेर मना देश में बोलल जला और लिखल जला भाषा। भोजपुरी को इंडो आर्यन भाषा है जिन परिवार में ढेर परिवार में भाषा के बोलल जला। मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी भाग और झारखंड में भी ये भाषा बोलल जला। रोजमर्रा की बातचीत, लोक गीत, नाटक और फिल्म में भी कर प्रयोग होला। और विदेश में भोजपुरी भी बोलल जला। और भोजपुरी बोलने वाले जैसे इतिहास में मजदूरी, इंडेंचर लेबर के कई के लिए जितना देश से आ रहा है इंडेंचर लेबर लोग अपन साथ अपन भाषा लेके आ रहा है। मॉरिशस में यहाँ पर बहुत संख्या में लोग भोजपुरी बोले लंस और लिखे लंस भी। नेपाल, फिजी में भी भोजपुरी बोलल जला। सुरीनाम और त्रिनिदाद टोबैगो में भी भोजपुरी बोलल जला। और मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में भोजपुरी हमेशा आगे बढ़। भोजपुरी फिल्म, भोजपुरी प्रोग्राम एमबीसी टीवी, एमबीसी रेडियो पर चलते रहेला। यूट्यूब पर भी और टीवी के जरिए भी भाषा के प्रचार प्रसार होला। लोकगीत और पारंपरिक संगीत में भी एकर योगदान बा। और शिक्षा और साहित्य में भी भोजपुरी के योगदान। भोजपुरी में कविता बा, कहानी बा, उपन्यास बा, कुछ जगह में ई भाषा के पढ़ावल भी जाला, भाषा के मान्यता भी देवल जाला। एकर को सांस्कृतिक पहचान है। भोजपुरी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि कुछ संस्कृति और पहचान भी है। और ये लोगन के अपन जड़ से

जुड़ल रखा हुई था। तो भोजपुरी आज एक भाषा केवल नहीं है, ये एगो तरीका है जिए कि हमनी भोजपुरी में बोली रह सर, भोजपुरी में बचाई रह सर, अपन व्यवहार की प्रस्तुत करी रह सर। और भोजपुरी जो है भाषा, इतिहास, संस्कृति

ऐसे ही भोजपुरी गमन करती रही और हमने की इजाजत रामा राम थोर की गावा गीत जुबेदा के साथ ही हमने के तुल की मुलाकात ये बड़ी समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से अभी के साथ दी रह जा, बहुत बहुत धन्यवाद। तुल के फोन कॉल और SMS का शुक्रिया। रात के 11 बजे उलाबाद थी, 11 बजे प्रोग्राम समाप्त हो जाए। 11:01 पर गिनीशा से सुनबा सुनहरी पल कार्यक्रम और रात के 12 बजे से कल फजर के 6 बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने की तुल की मुलाकात यहीं तक रहा। हमने की और तुल की मुलाकात हुई सामदी के फजीर के 6 बजे से 9 बजे MBC रेडियो मॉरिशस पर। तब तक हमने की इजाजत दें अजय प्रताप सिंह सितालु की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते और सलाम। शुभ रात्रि, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, नमस्कार।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार और गणेशा का प्यार भरा प्रणाम और आदाब। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का बड़े प्यार से हम स्वागत करना चाहेंगे इन दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। वैसे पुराने गीतों की मीठी सी खुशबू लेकर आज फिर हम लौट आए हैं उन यादों के शहर में, जहाँ हर सुर में बसा है प्यार और हर लफ्ज में एहसास। तो चलिए हर एक गाने को महसूस करने के लिए आप तैयार हो जाइए हमारा हम सफ़र बनने के लिए इस खूबसूरत सी सफ़र में।

सिसकता साज न दे।

ठिकाने भूल चुका नव दिल सनम नव दीन नरम अब दू

0: दुनिया बदली मन को ज्ञान मिला, आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला, पहुंचा रातों से कोई मुझे आवाज
1: तो चुजी। वो गाने जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाए, और वो अल्फाज जो दिल को आज भी जाते हैं। आइए दोस्त मिलकर रखते हैं फिर से उन हसीन लम्हों को सिर्फ यही आपके अपने शो पर, और ये है आपका अपना सुनहरा पल किनारे के साथ।
2: सुन कहा कुछ हुआ क्या,
3: आई तो नहीं कुछ भी नहीं।
2: सुनो

0: क्या मिला
1: सफेदा आँखों के सिवाए जवाब

तो दिल को हल्का सा मुस्कान दीजिए और साथ चलिए हमारा, जहां हम लेकर जाएंगे आपको पुरानी गलियों में, जहां पे आप खूबसूरत यादों को आपने सजा के रखा है।

ना कोई शोर ना कोई जल्दी है, सुकून भरे यह सुरों का सफर है मेरी जान। हर गाना एक कहानी है और कहानी एक याद।

खिड़ी।

बोली में होगी तू सच, लेकिन महक तेरे सांस में होगी। दिल झरोड़े में तुझको

झरोके में तुझको बिठा कर

से चाहे मैं कोई तुझसे शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी।

संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल

से नजर जब दी है जहाँ है कर्म तेरे वही मेरा दिल तुमसे नजर जब गई है मिल जहाँ कदम तेरे वही मेरा दिल जहाँ पल तेरी जहाँ जुल्फ तेरी रहो उसी मंजिल में तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से यारी

0: तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है तेरे संग ले मैं रंग ले के सपनों महफिल में तेरे दिल में
1: जमाना बदला लेकिन गीत नहीं बदले और नहीं बदलेंगे इनके जो जज्बात है ना आज भी नहीं गहरे हैं दोस्तों तो चलिए खो जाते हैं उन्हीं पुराने प्यारे नगमों में जो आपके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब हैं तो अगला नगमा हम करना चाहेंगे आपके लिए स्पेशली उन सुनने वालों के नाम जो हमारा साथ शिद्दत से दे रहे हैं

जमाना बदल गया है लेकिन गीत नहीं बदले, इनके जज्बात आज भी उतने ही गहरे हैं। तो चलिए खो जाते हैं उन्हीं पुराने नगमों में जहाँ देखिए हम लेके जाएंगे आपको उन वादियों में जहाँ पे आपकी प्यारा मुस्कुराहट ने छुपा के रखा है। तो हम तो कहते हैं कि आप आराम से जाइए और खूबसूरत नगमों में खो जाइए।

सच

वतन किसी बात से शाखे गुल छेड़ते मेरे हाथ अपनी ही

हर सुर में छुपा है एक अफसाना, हर धुन में बसी है एक कहानी। तो आइए फिर से महसूस करते हैं वो पुरानी सी नरमी सिर्फ इन सुनहरे गीत के साथ आपके सुनहरे पल में। जी हाँ, स्पेशली ऑन रेडियो मिरर्स, उन तमाम युवाओं के नाम जो फिलहाल शायद ड्राइव कर रहे हो, प्लीज आराम से गाड़ी चलाना और अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगला नगमा कुछ ज्यादा खास होने वाला है आपके यार के सफर के लिए।

0: एक बात बताऊं दोस्त,
1: ना जल्दी बता,
0: एक बार वो मुझे मिलने,
1: अच्छा?
0: मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ा,
1: फिर क्या?
0: उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी आंखें डाल दी, बस देखते रहे।

है वो फूल सड़ी है वो ऐसी जहां में कोई नहीं हाय चाकुड़ी है वो फूल सड़ी है वो ऐसी जहां में कोई नहीं पास

तो चलिए जी, फिलहाल इट्स टाइम फॉर गुड से गुडबाय टू यू। आप हमें इजाजत दीजिए, वादा करते हैं फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत शो में आपका अपना सुनहरे पर। फिलहाल के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: चल उस दुनिया में आ रही है जहां।
1: NBC रेडियो।

हम जमाने ना।

जो

Thank you.

एमबीसी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग
1: MBC रेडियो हर पल आपके साथ।

कोसी करती कमाल ओ ताली ना ताले करबा ममाले ताले चटकती ताले। ये रमिये रमिये।

غير قادر.

0: अमोरे मियो दोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।